0: Paperwork, merit certificate, and a memorable merit ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2003.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज. रिंग करें प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.

मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। भाई कैसे हैं आप? जी हाँ जनाब, आपसे ही मुखातिब हूँ, आप ही से बात हो रही है, कैसे हैं? देखिए, रेडियो प्रसवानी ट्यून इन कर लेना काफी नहीं है, हमारे हर सवाल पर जवाब देना भी जरूरी होता है बॉस, है ना? तो आप जैसे भी हैं, आपका मूड जैसा भी है इस वक्त, मतलब आलस फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा दिन गुजरेगा, बहुत सारे सवाल होते हैं यार सुबह सुबह मन में, है ना? तो उन सब कंफ्यूजन्स को, उन सब सवालों को जरा साइड कीजिए, क्योंकि रेडियो प्रसवानी पर इस वक्त सताक्षी आपके साथ है, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस लेकर, और आपके इन सारे कंफ्यूजन्स को मैं दूर करने वाली हूँ। ऐसे मॉर्निंग ट्रैक्स अभी आपके लिए प्ले करने वाली हूँ कि आप उनमें खो जाएंगे और भूल जाएंगे कि क्या क्या सवाल मन में आ रहे थे, थोड़ी देर बाद आपको याद भी नहीं रहेगा। फिलहाल एक ऐसे ही गाने के साथ बढ़ती हूँ सफर में आगे, आइए एंजॉय कीजिए इसे मेरे साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ, और मजा लीजिए सुबह का। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

इच्छापन एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। दोस्तों आपके साथ आज एक बार फिर से सताक्षी है और आपको सुनवा रही है कुछ बहुत ही प्यारे और मॉर्निंग ट्रैक्स, खूबसूरत मॉर्निंग ट्रैक्स, फास्ट ट्रैक्स। आहा, लेकिन हमारे जो सुबह का एक रिचुअल है उसे हम नहीं भूलते हैं, और वो ये कि सबसे पहले हम विश करते हैं उन्हें जिनके लिए स्पेशल और खास दिन है आज। सो जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको हम विश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो भाई जिनका है हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और देखिए जिंदगी में जन्मदिन हर साल आएगा, जब तक आप इस दुनिया में हैं हर साल आप इस दिन को मनाएंगे, लेकिन इस दिन के साथ खुद से एक वादा जरूर कीजिए और उस वादे को निभाने में पूरा साल लगा दीजिए। खुद के लिए खुद से एक वादा जरूर कीजिए और देखिए कि कुछ सालों में आप में कितने सारे अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। वो लोग जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, तो भाई इस शादी की सालगिरह ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और आप ऐसा कीजिए, आप एक दूसरे से वादा कीजिए और उसे निभाने में पूरा साल जरूर लगाइए। मेरा मतलब कहने का ये है किसी भी कीमत पे उस वादे को टूटने मत दीजिएगा और देखिए आपके रिश्ते में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उनसे तो क्या ही कहें भाई, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया गुजरे। सो आप सबको डेडिकेट करूंगी अगला ट्रैक, सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

0: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो सताक्षी के साथ. जी हाँ, इट हैपेंस. इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं.
1: कभी सोचा है आपने कि ईश्वर ने आपको दो कान और एक मुंह किस लिए दिया है? मतलब ऐसा हो सकता था ना कि हमारे भी दो मुंह होते, बट ऐसा नहीं है. यू नो व्हाट, ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि आप बोलें कम और सुने ज्यादा. बिकॉज आप उतना ही बोलते हैं जितना आपको पता है, लेकिन अगर आप सुनना शुरू करेंगे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, तो आप शायद वो सारी चीजें भी सुन सकें, समझ सकें, जान सकें जो अभी तक आपको नहीं पता है, है ना. और सुनने, समझने, जानने के बाद आपकी नॉलेज जो है वो उस एरिया में और बढ़ेगी. अदरवाइज बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोलते रहते हैं. कई बार उन टॉपिक्स पर भी हम बिना सोचे बोलते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है. तो बेटर है कि नॉलेज के साथ अगर जरूरत पड़े तो बोला जाए, राइट. इसलिए सुनिए ज्यादा, बोलिए कम. और वैसे भी सुनने से रिश्ते बच जाते हैं और ज्यादा बोलने से बिखर जाते हैं.

0: और लाइफ की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, ये जिस प्रॉब्लम से हम अभी गुजर रहे हैं वो हमारी लाइफ में बनी रही तो क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई जिन्हें सोचकर आप परेशान होते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक्चुअली रह ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि वक्त की फितरत है बदलते जाना, है ना, और वक्त कभी एक सा होके नहीं रहता है, ना तो अच्छा और ना ही बुरा। सो आज प्रॉब्लम है कल नहीं रहेगी, आज आप सक्सेसफुल हैं कल शायद आप ना रहें, आज फेलियर्स हैं और कल नहीं रहेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कमिटेड रहें, हार्ड वर्क करते रहें, अपना बेस्ट देते रहें। इसके बाद सिर्फ चिल करिए, रिलैक्स करिए और स्ट्रेस से दूर रहिए, बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा। और ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जी हाँ, वक्त का काम है चलते जाना और कभी टिक के एक सा न रहना।
1: सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ इट हैपेंस। ये सगले ट्रैक के साथ हमारे इस मॉर्निंग शो में बढ़ेंगे आगे।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं अप्रिय प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ इट हैपेंस में गानों की हैट्रिक में इस वक्त हमें जहां तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हमारा साथ निभा रहे हैं और अभी आपने पहला गाना सुना था, आप दूसरे गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ।

गानों की हैट्रिक के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये है लास्ट ट्रैक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, इसके बाद बहुत ढेर सारी बातें और बहुत बेहतरीन गाने आपको सुनवाऊंगी। फिलहाल गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM, सुनते रहिए ठैपन सताक्षी के साथ।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई?

0: सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
1: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
2: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
3: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: देखिए, जिसने ना हिम्मत करके अपने पैरों को एक बार आगे बढ़ाया ना, असल में सफलता उसी को मिलती है। हम हमेशा ये सोचकर बैठे रहते हैं कि जब वक्त अच्छा आएगा तब हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, या फिर वो कर सकता है क्योंकि उसमें हिम्मत थी, या वो कैपेबल था, हम इतने कैपेबल नहीं है। एक्चुअली आपकी ये सोच ही है जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोक देती है। इसलिए अगर सामने वाला कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, अगर वो इतना कैपेबल है तो आप भी हैं। बात और जरूरत सिर्फ हिम्मत की है, तो एक बार हिम्मत कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, ताकि आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकें जिसके एक्चुअली आप अभी तक सपने देखते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, राइट? तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपनी उड़ान के खुद जिम्मेदार बनिए।
1: स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रसवानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

0: एटापन्स एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रेस वाणी 1701 एम पर हमारे इस ब्रेकफास्ट शो में। आज एक बार फिर से हो रही हैं जिंदगी की कुछ खास बातें, हमारी आपकी कुछ खास बातें।
1: हमेशा यही सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर वैसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। देखिए ऐसा है कि भूल जाइए लोग क्या कहेंगे। अगर यही सोचना है कि कौन क्या कहेगा तो ये सोचिए कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उस पे ईश्वर क्या कहेगा, ऊपर वाला क्या कहेगा। अगर

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिन आल से बने हुए। देखो सैफ अली खान ते शान लगभग दो दहाके बाद ना फिल्म हैवान दे नाल एक बार फिर तो इकट्ठे नजर आए है। जुगलबंदी बहुत शानदार है, एक शानदार एक्टर ते एक शानदार सिंगर है। फिल्म दा पहला गीत है जिहड़ा मेरे हीरो है वो हाल ही विच रिलीज होया है ते इसने फैंस नूं एक बार फिर तो इस जोड़ी दी शानदार संगीतात्मक जुगलबंदी दा तोहफा दित्ता है। गाने तो पहला ही खूब गाने नूं प्यार मिल रहा हैगा कि फिल्म रिलीज होण तो पहला ही, तो मैं सोचा कि क्यों ना हुण मौका इहो जिहा हैगा है तां नज़र पाईए जां सैफ ते शान ने म्यूजिकल चार्टर्स विच अपना जलवा बिखेरिया सी, कट्ठे कट्ठे आए सी। करिए ना उहनां दी गल तां करदे आं, पर पहलां सुणो एक गीत।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वंसरों वाने अमते जी आर छे संदेश और लग दिनाल से बने हुए हो। इस लेज़े विच सब तो पहला नाम जेड़ा आंदा है गाए वो है जी मूवी दा जड़ी मूवी है दिल चाहता है ते गाना है वो लड़की है कहाँ। सैफ अली खान दे चुलबुले किरदार समीर अते शान दी जोशीली आवाज ने दिल चाहता है दे वो लड़की है कहाँ दे गाने नु शानदार तालमेल बनाया। सैफ दा आकर्षक अंदाज अते उन्हां दीआं प्यारे एक्सप्रेशन इस गाने नु अज वी फैंस दा पसंदीदा बनाए हुए ने। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एम ते चार छे संदेश चौलक दे नाल सिपाणे होए। इस तो बाद जेड़ा आंदा हैगा है गीत बारे नहीं, पहला फिल्म बारे दसती हाँ। तो फिल्म है जी हम तुम बहुत सोहनी फिल्म हैगी है। हुण तुसी जे सर्च करोगे गूगल ते तो तुहानू पूरा डाटा मिल जाना हैगा है हम तुम दा। मैं नहीं दसदी, तुसी एक बार सर्च करो तो फिर मैनू मैसेज करो। तो इसका गाना है लड़की क्यों, सैफ अली खान दे सहज ते बेफिक्र अंदाज वाले करण नूं। इस गाने विच शान दी मधुर ते दिलकश आवाज दा बेहतरीन साथ मिलिया सी। रानी मुखर्जी दे नाल सैफ दी चुलबुली केमिस्ट्री ते गाने दे गलबात वर्गे बोल ने लड़की क्यों नूं सैफ ते शान दे सब तो यादगार कोलैबोरेशन दे विचों इक बना दिता सी।
1: Show mercy on it.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Queensland vich har saal janglaan vich aag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ।
2: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हां जी रेगुआ, फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते जी आरचे संदेश चौलक दे नाल सी बने होयो। अगली फिल्म जेड़ी सैफ अली खान दी ते ओदा गाना जिसनु श्यान ने गाया हैगा ओ बहुत खास है, ते वो फिल्म है जी सलाम नमस्ते। हां जी सलाम नमस्ते, ते फिल्म सा गाना सलाम नमस्ते नी, गाना हैगा माय दिल गोज आ गया ना यार, ये बहुत ज्यादा हिट गाना सी ते एहे इना दोनों दी कोलैबोरेशन सी। शांति सॉफ्ट ते यंग आवाज ने इस गीत विच सैफ अली खान दे कूल रोमांटिक ते बेफिक्र अंदाज नू बखूबी कॉम्प्लीमेंट किया। ब्रिजेस इंटर दे नाल सैफ दी शानदार केमिस्ट्री ते उन्हां दी सहज स्क्रीन प्रेजेंस ने इस गाने नू एक खास यंग अट्रैक्शन दिता सीगा जो अज भी हिट है।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हाँ जी जी आया नु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरी स्टेशन रेडियो पे सोनी वंसन वाले हम ते चार चे संदेश अलग दिन आल से बने हुए। अगला जेड़ा गाना है गाए वो है जी मेरे हीरो है वो, जिसकी स्टार्टिंग दे विच गल की थी ते फिल्म है जी हैवान। जी हाँ, हे शोना दे लगभग 19 साल बाद सैफ अली खान ते शान एक बार फिर हैवान दे गाने मेरे हीरो है वो दे नाल इकट्ठे आए ने। ये मधुर गाना सैफ नू एक बिल्कुल अलग गते पहला कदे ना देखे गए अंदाज विच पेश करता है, जबकि शांति आवाज इस गाने नू म्यूजिकल टच दिंदी है। रिलीज होने तो हुंदे ही ये गाना फैंस दे विचकार अपनी जगह बना चुकिया है ते काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

हां जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 FM ते जी आरजे संदेश अलग दिन आप से बने हो। देखो इन्हीं सारिया चीजा बारे मैं थोड़ा दसता हैगा, इन सारे गीतों बारे मैं थोड़ा दस दिता हैगा, जेडे सैफ अते शान दे इकट्ठे आए ते बहुत ज्यादा पसंद किए गए दर्शकों वालों। जिमें सब तो पहला दिल चाहता है तो वो लड़की है कहां, फिर हम तुम तो लड़की क्यों, फिर सलाम नमस्ते तो माए दिल गोज, फिर हे सोना फिल्म हैगी है तारारम पम, फिर उस तो बाद आंदा है जी मेरे हीरो है वो है बान फिल्म। तो हुण तुसीं ये दसो कि इस दे विचों केड़ा गीत थानू बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुसीं चाहुंदे है क्यों कि होर इन्हां दी दोनों की जुगलबंदी इकट्ठी देखण मिले, तो कॉमेंट करो मैसेज करो मेल करो जो भी करो पर जुड़ो साडे नाल।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2003.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane,

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
4: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगती है. ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है. जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ. अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो. होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो. क्वींसलैंड सरकार.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: इंडिया में अकेले हैं
1: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: I am your only Adam.
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। सबसे पहले आप सबको हैप्पी फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, तो आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सरवाइव नहीं थ्राइव किया है, और थ्राइव करने के बाद फ्राइडे आ गया है। मतलब फ्राइडे आ जाता है। वैसे देखा जाए ऐसे कहने की बात होती है कि फ्राइडे जल्दी नहीं आता, पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे जल्दी आ जाता है, क्योंकि मैं तो वही काम कर रही हूँ जिससे मुझे प्यार है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वही काम कीजिए जिसमें आपको प्यार है, उसी की वजह से आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप अपने काम से प्यार करते होगे, जिस फील्ड में आप हो उससे आपको इश्क होगा, मोहब्बत होगी, तो फिर तो आप देखो कितनी बड़ी सफलता को जो है, कितनी ऊंचाइयों को जो है वो छूने वाले हो। सो, हमेशा यही कीजिए, और अपने बच्चों को भी यही सलाह दीजिए, मैं तो यही कहती हूँ। जी हाँ, रादर देन अपनी एम्बिशंस उन पर थोपने के बजाय उनको जो करना है उनको करने दीजिए, बिकॉज जब वो करेंगे उन्हें प्यार है तो वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। और हमें ना सिर्फ काम नहीं करना है, हमें एक्सीलेंस ढूंढनी है, एंड एक्सीलेंस इज व्हाट वी शुड स्ट्राइव फॉर। जी हाँ, यहां पर अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और प्रोग्राम की शुरुआत में ही आप बोलोगे कि निवेश शर्मा ऐसा लग क्यों रहा है कि आज फ्राइडे नहीं, मतलब फ्राइडे वाली बातें नहीं कर रही हो तुम बातें कर रही हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मोटिवेट कर रही हो। अरे मोटिवेशन भी जरूरी होती है, क्योंकि लेट्स बी रियल, फ्राइडे है तो वीक डेज का ही दिन ना, मतलब हाँ उसको हम मानते नहीं है क्योंकि वो बहुत ही मजेदार सा दिन है और वो वीकेंड के पहले आता है, तो ऑफकोर्स इसलिए उसे हम ऑलमोस्ट वीकेंड में गिनते हैं, लेकिन दिन तो वो काम वाला ही है। जी हाँ, सो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ, और बढ़िया सा गाना तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको करवाएंगे डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, क्योंकि ये एक हेल्दी रिचुअल है जो हम हमेशा अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और आइए ऐसे ही शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की खूबसूरत से गाने के साथ। गाने का नाम है दिल दिया गल्ला, और दिल दिया गल्ला जो भी आपके साथ करना चाहता है ना, उनके साथ आप भी कर ही लीजिए, क्योंकि दिल की बातें हो रही है भाई।

जी दोस्तों, और फाल्गुनी पाठक की आवाज सुन के तो मैं तो अभी ही गरबा की फील में आ गई हूँ। जी हाँ, और गरबा अभी दूर नहीं है। जी हाँ, नवरात्रे जो है वो ऑफकोर्स 1.5 महीने बाद आ जाएंगे, और उसका मतलब यही है कि गरबा होगा और बहुत सारा मजा होगा। पर चलिए, अब उसमें अभी टाइम है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फील फाल्गुनी पाठक की आवाज में वही होती है, जब भी सुनो ऐसा लगता है गरबा का मौसम बस आ ही गया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं सबसे पहले मौसम की। और मौसम कह रहा है 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, और अभी की बात की जाए तो 21.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको ऑन द अदर हैंड हो रहा है 19 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, तो ये है दिन के मौसम का हाल। रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे। और जैसे मैंने कहा था कि सूरज खिला खिला रहेगा और बहुत ही मजेदार सी सूरज की किरणें आपको अपने ऊपर पड़ती हुई नजर आएंगी, वैसा ही हुआ। जी हाँ, और बारिश का कोई चांस नहीं था, वैसा ही हुआ। रात की बात करें तो वो थोड़े से बादल मुझे आसमान में दिख रहे हैं, बट थोड़े बहुत बादल होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, बाकी सब ठीक मुझे अच्छा नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी भी है एकदम फेयर। जी हाँ, ये तो हुई आज की बात। अब जरा बात करते हैं कल की यानी कि सैटरडे एंड संडे की। सैटरडे की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 10% चांसेस है बारिश के, और थोड़ी बहुत क्लाउडी सिचुएशन रह सकती है, बट सूरज भी मुझे यहां पर निकला हुआ नजर आ रहा है। बारिश के चांसेस बहुत कम है, बट बादल थोड़े बहुत आसमान में आपको देखने को मिल सकते हैं। संडे को ऑन द अदर हैंड 50% चांसेस हैं बारिश के विद 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड यू नो व्हाट, अब जो है मतलब आज के टेम्परेचर के बाद और कल के बाद, कल 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है मैं पूरा का पूरा हफ्ता जो है वो टेम्परेचर बढ़ते हुए ही देख पा रही हूं। जी हाँ, मतलब आराम से एक दिन तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस भी होने वाला है। तो स्प्रिंगी फील आ गई है और आप भी इसका मजा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ ये है मौसम का हाल, और अब जरा चलते हैं आगे की चाल और एक और गाना आपको सुनाते हैं।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

दोस्तों एक बात बोलूं मैं, अगर आप लोग भी परेशान हो कि आपके घर वाले आते हैं और आपको उठा देते हैं, आप जब बहुत ही अच्छी नींद में सोए होते हो और वो आपको एकदम से उठा देते हैं, तो आप बोलो कि अगले जन्म में मोहे बेर बनाइयो। जी हाँ, मतलब कि अगले जन्म में आपको बेर बना दे। जी हाँ, भालू, और वो भी कहाँ पर? नॉर्वे के आसपास रहने वाला भालू। क्योंकि अगर आप नॉर्वे के आसपास रहने वाला भालू होंगे तो आपको कोई उठाएगा ही नहीं, आप जितनी देर तक सोना चाहते हो सो सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कोई उठाने की कोशिश करेगा तो उसे फाइन देना पड़ेगा, दैट टू ऑलमोस्ट 5,000, $5,500 का। जी हाँ, आप लोग बोलोगे अरे वाह, अगर ये फाइन सच में हर किसी के लिए अप्लाई हो जाए तो हमारे घर वाले भी हमें परेशान नहीं करेंगे। अरे आपके साथ का मेरे साथ भी होता है ये अत्याचार, मुझे भी जल्दी से उठाने की कोशिश की जाती है, बट उठता तो तभी हूं मैं जब मुझे उठना होता है। जी हाँ, आपको तो पता ही है, ढीठ लोग ढीठ होते हैं। जी हाँ, और किसी किसी को नींद थोड़ी ज्यादा प्यारी होती है। सो या, देयर इज Definitely a loophole to everything. So, जो मैं ये कह रही हूँ ये it's a real thing. You know what? अभी कुछ वक्त पहले एक बहुत ही funny incident हुआ, जब एक बंदा, जी हाँ, जो कि नॉर्वे का ही सवलवाड आर्किपेलागो में था, वहां पर जो है एक आर्कटिक बेयर को उसने उठा दिया। जी हाँ, और उसे 50,000 kroner, मतलब जो कि नॉर्वे की जो वो होती है करेंसी उसके हिसाब से, और अगर हम इंटरनेशनल करेंसी के हिसाब से देखें, मतलब अमेरिकन डॉलर के हिसाब से देखे, तो $5,255 का फाइन उसे मिला, क्योंकि उसने लिटरली एक स्लीपिंग पोलर बेयर को जगा दिया। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि स्लीपिंग पोलर बेयर को जगाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी तेज तेज आवाजें की और उस आवाज से वो बेचारा बेयर जो है, जो कि वहां पर सो रहा था, वो उठ गया और उसने अपनी जगह को चेंज कर लिया। और फिर क्या हुआ? जी हाँ, और फिर लिटरली एक महीने बाद जो है उसके वेसल जिसमें वो ट्रैवल कर रहा था, उसकी सेलिंग कर रहा था, वहीं पर उसको ये फाइन जो है वो पहुंच जाता है, ये हेफ्टी सम ऑफ फाइन उसको मिल जाता है कि अगली बार कुछ भी करना, सोते हुए भालुओं को अगर तुमने उठाया, दैट टू पोलर बेयर, क्योंकि वो लिटरली प्रोटेक्टेड स्पीशीज है नॉर्वे के आसपास और ऐसे में उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि यहां पर 1,000 kilometers जो पूरा एरिया है, वहां पर आप किसी भी सोए हुए पोलर बेयर को उठा नहीं सकते हो। मैं तो कहने वाली हूं मम्मी को भी अपनी जाके कि देखो मम्मी, अगर आपने भी मुझे उठाया तो इतना फाइन आपको भी भरना पड़ेगा। शायद मेरी मम्मी भी डर जाए, लेकिन मेरी मम्मी को ना बुद्धू बनाना इजी नहीं है। सो लेट्स सी, आप ट्राई कीजिए और आप मुझे बताइए कि क्या आपके केस में ये काम करता है या नहीं करता है। बट देन अगेन, कभी भी आपके सामने भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो किसी भी सोते हुए जानवर को उठाइएगा मत, क्या पता कहीं फाइन आ जाए। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निबिया के साथ। दोस्तों आपने ब्यूटी पीजेंट्स का नाम तो सुना ही होगा, मतलब इतने सारे ब्यूटी पीजेंट है, मिस वर्ल्ड, मिस एशिया, यू नो मिस यूनिवर्स और मिस यू नो इंडिया और अलग अलग कंट्रीज का, हर का मिस ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपने ये सारे सुने होंगे। ये सारे ब्यूटी पीजेंट्स होते हैं, वैसे ही ब्यूटी पीजेंट्स जो हैं वो डॉग के भी होते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी एक ऐसा पीजेंट भी है जो ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अगलीनेस के लिए, मतलब सबसे ज्यादा अगली जो डॉग होगा उसको प्राइज मिलेगा। आप लोग बोलोगे कि व्हाट अ वियर्ड वे टू मेक समवन फील बैड अबाउट देमसेल्फ। जी हाँ, आई नो, मुझे भी यही फील हो रहा था कि ये कैसा पेजेंट हुआ भाई, ये क्या बात हुई। ये एक कंपटीशन है, लिटरल कंपटीशन, जी हाँ, जो कि कैलिफोर्निया में होता है और ये सोनोमा काउंटी फेयर ग्राउंड में जो है होता है और सेंटा रोजा कैलिफोर्निया में होता है और ये सोनोमा काउंटी फेयर ग्राउंड जो है, आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन और आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा अगली डॉग को जो है वो फर्स्ट प्राइज दिया जाता है और उनको कैश प्राइज मिलता है एंड इट्स अ हेफ्टी कैश प्राइज, आई मीन $5,000। अब आप लोग बोलोगे हैं सुंदरता के लिए तो प्राइजेस मिलते सुने हैं लेकिन अगलीनेस के लिए प्राइजेस भी मिलते हैं। वेल या, लेकिन किसी भी क्रीचर को अगली बोलना और उस वजह से उसको प्राइज देना, आई डोंट नो कि ऐसा प्राइज हमें में से किसी को भी चाहिए होगा और किसी भी डॉग को चाहिए होगा। आई डोंट नो उस डॉग को भी ये चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, लेकिन उसके ओनर को जिसने उसे रेस्क्यू किया है उसको काफी फायदा हो गया है। सो ये एक पग है जिसका नाम है जिनी लू, जिसने लिटरली जीत लिया है वर्ल्ड्स अगलिएस्ट डॉग का कॉन्टेस्ट जो कि 2026 में हुआ है कैलिफोर्निया में सेंटा रोजा में। और जिनी लू जो है उसने लिटरली वन ओवर किया जजेस पे अपने डिस्टिंक्ट सिग्नेचर लुक से। जी हाँ, उनके जो फीचर्स थे इट वॉज लाइक बल्जिंग आईज एंड अ टंग दैट परमानेंटली हैंग्स आउट ऑफ हर माउथ। और जिनी लू ने अपने ओनर को जो कि है मिशेल ग्रेडी, उनको जीत के दिए हैं $5,000। जी हाँ, और फर्स्ट प्राइज जो है ये MUG रूट बेयर ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने जो है इंडोर्स किया है ये फर्स्ट प्राइज। आप लोग बोलोगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निबिया, वेल आई कांट मेक सेंस, आई कांट मेक पीस विद इट कि हाँ ये कैसे, मतलब किसी को अगली होने की वजह से प्राइज दिया और किसी को अगली कहना, इज दैट ऑल राइट? आई मीन इवन इफ इट्स अ डॉग, इज इट ऑल राइट? आई डोंट नो, मतलब एक पग है जिसका नाम जिनी लू है, वो सबसे ज्यादा अगली दिखता है पूरी दुनिया में, इसलिए उसको फर्स्ट प्राइज मिला और उसके ओनर को $5,000 मिले। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पग को जो है वो लिटरली रेस्क्यू किया गया है क्योंकि ये बहुत ही बुरे हालात में था और ये 6 साल की है और इसके बाद जो है ये अब अपने ओनर के साथ रहती है बहुत ही खुशी से। सो जिसने भी इसको रेस्क्यू किया है, यू नो व्हाट, बहुत ही अच्छा दिल है आपका। लेकिन अगेन, ऐसे कॉम्पिटिशन्स को बंद करना चाहिए लिटरली, मतलब किसी भी क्रिएचर को बैड फील करवाना बिकॉज ऑफ हिज लुक्स और I don't know. It does not make sense to me. I don't know. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब मैं एक फरमाइशी गीत प्ले करने वाली हूँ। जी हाँ, फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आप भी इस सफर में सवार हो जाइए विद योर फरमाइश। उससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा, राइट? तो आपको करना क्या है, आपको अपनी फरमाइश भेजनी है, नंबर आपके पास है। लेकिन यहाँ पर जो मैं फरमाइश प्ले करने वाली हूँ वो है हमारी बहुत ही खास लिसनर पूजा जी की। जी हाँ, पूजा जी ने जिस गाने को भेजा है उसका नाम है अम्मा पुछदी सुनती ये मेरी। मतलब कि अम्मा यानी कि माँ पूछ रही है, कि माँ पूछती है कि सुन बेटी मेरी। जी हाँ, ये इसका मतलब है। और एक्चुअली ये जो क्या कहूँ मैं आपको, मतलब मैं कैसे आपको समझाऊँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो ये थोड़ी सी पंजाबी भी है, थोड़ी सी डोगरी है, मतलब जो जम्मू के लोग बोलते हैं भारत में, इंडिया में, और थोड़ी सी ये कांगड़ी भी है, मतलब हिमाचल में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी है। सो ये तीन जगहों की आप लैंग्वेज जो है कह सकते हैं, पर मेनली ये डोगरी और हिमाचली यानी कि कांगड़ी जो है वो ज़्यादा है। एंड या ये गाना जो है वो बहुत ही खास है। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए पूजा जी। इससे पहले हमने कांगड़ी गाना या कोई डोगरी गाना ऐसे नहीं प्ले किया था, सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा ये गाना, अम्मा पुछदी सुनती है मेरी है।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks. And we're chosen by millions.
1: Priya, next month mama ka birthday. Soch rahi hoon, unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do. Jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
2: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
1: Acha? Wo kya?
2: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho. Lotus foreign exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
1: Lekin mama ke liye money lene kahin door jana possible nahi hoga.
2: Are, receivers ab cash pickup, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल बिजली का बिल देख कर
3: हर महीने शॉक लगता है क्या?
2: तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@resolarpower.com।
4: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 0441-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 Clover Street, Wollongabba mein. For weddings, engagements, renewal of vows or commitment ceremonies ghar par, hall ya park mein. Book with Parmanand. Call now on 0411-27035. Remember, the number is 0411-27035. Ya phir email kare parmanand@optusnet.com.au par. For best service, complete legal paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्चे निव्या के साथ। दोस्तों तो फ्राइडे आ गया है और कुछ नया थिएटर्स में आया है या नहीं, इसी की बात करने हम आ गए हैं। वीकेंड इज हेयर, क्या क्या आप देख सकते हो इस हफ्ते, इस वीकेंड थिएटर्स में, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आवारापन 2, जी हाँ आवारापन 2 जो है वो लगी हुई है, इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की मूवी, और शबाना आजमी भी आपको इसमें मिलने वाली है। यह है सेकंड पार्ट आवारापन का, जो कि बहुत पहले आई है, 15 साल पहले आज से, और उसी मूवी के दो गाने भी हैं इसमें, मतलब पहली आवारापन के गाने भी हैं इसमें, तेरा मेरा रिश्ता और तो फिर एग्जैक्टली वो भी है। एंड वो दोनों ही इसे और भी ज्यादा मजेदार मजा रहे, मतलब आप सोचिए सॉन्ग्स सो गुड दैट अभी भी उनका इम्पैक्ट जो है इस मूवी को सफल बनाने में लगा हुआ है। और इमरान हाशमी इसमें आपको अगेन एक्शन, क्राइम और रोमांस सर्व करने आ रहे हैं, बिकॉज रोमांस तो हो गई, वी आर टॉकिंग अबाउट इमरान हाशमी आफ्टर ऑल। जी हाँ, इसके साथ ही आप देख सकते हैं इंसिडियस आउट ऑफ द फर्दर, जी हाँ, लेकिन उससे पहले बटवारा 1947 के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सनी देओल की ये मूवी प्रीति जिंटा के साथ वैसी ही फील आपको दे सकती है जैसे कि गदर ने दी थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, क्या है वो आपको देखना होगा। पिछले हफ्ते यानी कि 15 अगस्त के मौके पर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है, और इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, उस वक्त से रिलीज किया गया था, और अब जो है ये कैसा काम कर रही है, वी गोना टॉक अबाउट इट। बट पहले हम आपको बता दें कि ये भी आप देख सकते हैं जी हाँ, इसके अलावा आप देख सकते हैं धमाल 4 और धमाल 4। अगर आप धमाल सीरीज के फैन हैं तो जरूर देखिएगा, और नहीं भी फैन है तो पहले आप धमाल की बाकी सारे पार्ट्स देखिए और फिर धमाल 4 देखने जाइए। यू आर गोना लव इट बिकॉज इट्स अ फैमिली मूवी, इट्स अ कॉमेडी मूवी, इट्स अ एडवेंचर मूवी। जी हाँ, तो ये कुछ इंडियन मूवीज है जो आप देख सकते हैं अपने नजदीकी सिनेमा घरों में इस हफ्ते। और इसके अलावा अब बात करने वाले हम हॉलीवुड की मूवीज की, लेकिन पहले हम आपको सुनाएंगे एक और जबरदस्त सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर अब जरा हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स मूवीज के बारे में, जो मूवीज आप देख सकते हैं थिएटर्स में इस वीकेंड। जी हाँ, और जैसे मैंने आपको हिंदी मूवीज के बारे में और इंडियन मूवीज के बारे में बता दिया है, अब जरा चलते हैं हॉलीवुड मूवीज की तरफ, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में काफी कुछ लगा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और बहुत बड़ी बड़े बजट की और बड़े बड़े बैनर की मूवीज जो है वो यहाँ लगी हुई है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे। जी हाँ, स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे अभी भी इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग, 2 बिलियन यानी कि 2.5 बिलियन से ऊपर की कमाई कर चुकी है, और आप इमेजिन कर सकते हो वो कितने पैसे हैं। मैं नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें कितने जीरोस होते हैं, या लेट मी थिंक अबाउट दैट। जी हाँ, इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ टॉम हॉलैंड जो है वो भी बन गए हैं जबरदस्त तरीके से हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर, मतलब हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2026, क्योंकि उनकी मूवीज ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, इसी के साथ द ओडिसी आप देख सकते हैं क्रिस्टोफर नॉलन की, इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टोफर नॉलन का नाम लेने की जरूरत है, दैट्स इट, और आप उसी से ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे, उसी से ही आकर्षित हो जाओगे और आप देखोगे ये मूवी। वेल, आपको मैं बता दूं कि मूवी इज अबाउट अ माइथोलॉजिकल, ग्रीक माइथोलॉजिकल चैप्टर। जी हाँ, ट्रोजन वॉर के बाद द ओडिसियस जो है वो अपने घर जा रहा है, 10 साल ट्रोजन वॉर में लग जाते हैं, और ट्रोजन वॉर के बाद 10 साल घर जाने में लग जाते हैं, घर जाते जाते वो खो जाते हैं, फिर क्या क्या होता है और वो जर्नी कैसी रहती है उसी के बारे में है। घर पे बीवी और एक बेटा इंतजार कर रहे हैं, और ये सारा का सारा जो है चैप्टर, इस पर ये मूवी बनी है। बड़े बड़े स्टार्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैट डेमन के साथ आपको टॉम हॉलैंड उनके बेटे के कैरेक्टर में मिलेंगे, उनकी वाइफ के कैरेक्टर में, पेनेलोपे के कैरेक्टर में आपको मिलेंगी एन हाथवे देखने को। जी हाँ, जेंडेया आपको इसमें मिलेंगी साथ में देखने को, चार्लीज थ्रोन आपको मिलेंगी, रॉबर्ट पैटिंसन आपको इसमें मिलेंगे, और आपको लुपिटा न्यांग भी इसमें मिलेंगी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि क्रिस्टोफर नॉलन अगर लिटरली आवाज भी मारेंगे ना, सारे के सारे हॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, ही हैज दैट सॉर्ट ऑफ इंपैक्ट ओवर हॉलीवुड स्टार्स। जी हाँ, इसी के साथ एक और नई मूवी जो लगी है वो है इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर, मतलब इंसीडियस चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये सब आपने देखी होगी। अगर आप हॉरर के शौकीन हो और हॉरर मूवीज में आपने इंसीडियस नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। उसी का एक और चैप्टर यानी कि आउट ऑफ द फर्दर जो है वो आ गया है थिएटर्स में, इट्स अ हॉरर मूवी, सो इफ यू वांट टू वॉच इट, गो फॉर इट, इफ दैट इज नॉट योर जॉनर, डोंट गो फॉर इट, आई एम सो सॉरी, डोंट गो फॉर इट, बिकॉज इंसीडियस जो है वो काफी डरावनी हो सकती है, काफी डरावनी। जी हाँ, इसी के साथ दो और मूवीज है जो आप देख सकते हो थिएटर में हॉलीवुड की तरफ से ही, जो कि अगेन बहुत मजेदार होने वाली है, मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और बढ़िया सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता रही हूँ उन मूवीज के बारे में जो इस हफ्ते थिएटर्स में जाके आप देख सकते हैं। कुछ अपनी फैमिली के साथ, कुछ आपको अकेले देखनी होगी और कुछ अपने बीड़ू लोगों के साथ देखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे के बारे में बताया, द ओडिसी के बारे में मैंने आपको बताया, और इंसीडियस जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा डरावनी हो सकती है, तो उसके हिसाब से ही जाइएगा अगर आपको डरावनी मूवीज पसंद है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू मूवीज जो कि आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। द वन इज Yeah, it's about dinosaurs and the other one is also kind of about dinosaurs. So, पहली वाली है Anne Hathaway की movie The End of Oak Street. जी हाँ, The End of Oak Street एक बहुत ही interesting movie है, क्योंकि ये एक town है जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों वाला का town है, और वहाँ पर जब वो लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अगले दिन वो सुबह उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तब realize करते हैं कि उनका जो town है पूरा का पूरा वो dinosaur era में पहुंच गया है, और उसके बाद उनको कैसे नेविगेट करना है अपनी लाइफ को और फिलहाल डायनासोर से कैसे निपटना है, बिकॉज हम डायनासोर्स के बीच में नहीं रहते हैं, सो हमें उनके बीच में नहीं रहना आता है। अब मॉडर्न डे फैमिली और मॉडर्न डे टाउन डायनासोर एरा में पहुंच जाएगा तो क्या होगा? वेल, यही सर्वाइविंग स्टोरी और सर्वाइवल स्टोरी जो है वो आपको देखनी है, विच इज क्वाइट मिस्टीरियस साइफाई थ्रिलर एंड एक्शन आपको मिलेगा। आपको लग रहा है ये कॉमेडी मूवी है, पर ये एग्जैक्टली कॉमेडी नहीं है, जैसे मैंने इसके जॉनर आपको बताया, एक्शन मिस्ट्री साइफाई थ्रिलर। जी हाँ, Anne Hathaway आपको इसमें मिलने वाली है। इसी के साथ एक और मूवी जो कि आप अपने बच्चों के साथ जा सकते हो, दैट इज Paw Patrol द डायनो मूवी। जी हाँ, और ये मूवी जो है एडवेंचर है, एनिमेशन है एंड कॉमेडी है, मतलब ये एनिमेटेड मूवी है जो कि आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो। आई मीन, नाम से ही कितनी क्यूट लग रही है, Paw Patrol द डायनो मूवी। आई लव इट, आई ऑलरेडी लव इट। आई हैवंट सीन द मूवी एट, बट मुझे लगता है मैं नाम से ही इसको प्यार करने लग गई हूँ। जी हाँ, सो टेक योर किड्स टू दिस मूवी एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, और ये एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त है।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415952।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roising. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602.
1: 0411-022-602. Oye, Rahul, Virey, tere
2: Go for the best, Virey. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience ha. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense which 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws which we Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience ha. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji on 0400.
3: Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaj layi muft kit bhejange. Hor jankari layi fire ants Queensland ja fire ants QLD khojo ja 132 ANT yani ke 132268 utte call karo. ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
4: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्जे निव्या के साथ। और दोस्तों, अब जरा चलते हैं खबरों की तरफ, रुक करते हैं। आई नो आप फ्राइडे है और कोई भी सीरियस बात के बारे में बात करने का मन नहीं कर रहा, कोई भी सीरियस चीज जानने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी आपको जान लेना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की खबर से। जी हाँ, मेडिकल जांच के बाद इमरान खान को फिर अडियाला जेल भेजा गया। जी हाँ, सो यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या नहीं जिंदा है, पहले इस पे अटकलें लगी हुई थी। अब अस्पताल भेजा जा रहा है, इधर भेजा जा रहा है, उधर भेजा जा रहा है। वेल ऑफ कोर्स, पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट पूरी अच्छी तरह से अपना टेन्योर तो पूरा कर ही नहीं पाती है ना, बट ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने सोशल मीडिया पर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद अस्पताल से वापस अडियाला जेल भेज दिया गया है। एक्स पर पोस्ट में अताउल्ला तरार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि आंखों के डॉक्टर, हृदय के रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन समेत विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने इमरान खान की विस्तृत मेडिकल जांच की और उन्हें चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाया। अताउल्ला तरार के मुताबिक इमरान खान की बहन उज्मा खान जांच और इलाज की पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद 21 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे इमरान खान को वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। यू नो वॉट इज द फनीएस्ट थिंग, कि ऑफकोर्स मैं यहां पर चाहूंगी कि इमरान खान ठीक हो जाए, बिकॉज इमरान खान वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जब वो इलेक्शन में खड़े हुए थे तो बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके लिए चीयर कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि इमरान खान किसी तरह का चेंज ला पाएंगे। और अभी भी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हुई है, बट प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी भी कोई भी इंसान और कोई भी पॉलिटिशियन जो एक्स पॉलिटिशियन हो जाता है उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाती है, मतलब उसकी खैर नहीं होती। मतलब मुशर्रफ जब थे तो उन्होंने बहुत कहर मचाया हुआ था, ही वाज अ डिक्टेटर, लेकिन बाद में उनको अपनी पूंछ बचाना जो है वो मुश्किल हो गया। जी हाँ, अब आप खुद ही सोच लिए, नवाज शरीफ जो है वो किसी टाइम पर प्रधानमंत्री रहे, राइट, लेकिन उसके बाद जो है उन्हें भी अपनी पूंछ बचाना मुश्किल हो गया। इमरान खान के टाइम पे वो कहते थे कि ये तो हमें जहर देने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह वो लंदन पहुंचे अपनी पूंछ बचा के। अब वही चीज वो इमरान खान के साथ कर रहे हैं। सो इनका यही चल रहा है, मतलब

पाती, तो फिर वो बंदा भाग जाता है और दूसरी कंट्री में छुप जाता है। और ऐसा ही होता आया है हमेशा से। अब आप देखें आगे क्या होता है, क्या इमरान खान जिंदा बचते हैं या नहीं बचते हैं, वो भी एक बड़ी मिस्टीरियस चीज होने वाली है। जो है यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, खबरों की बात हो रही है और वहीं इसराइल का वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्रोजेक्ट का क्या है, जिस पर ब्रिटेन समेत 5 देशों ने जताई कड़ी आपत्ति। जी हां, इसराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण इलाके में करीब 1200 नए सेटलमेंट घर बनाने के लिए टेंडर जारी करने की योजना बनाई है। इस फैसले की अमेरिका के कुछ प्रमुख सहयोगी देशों ने कड़ी आलोचना की है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने एक संयुक्त बयान में इस फैसले को स्वीकार्य बताया और इसराइल से इन योजनाओं को तुरंत वापस लेने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी इजरायली सेटलमेंट को अवैध माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इसराइल ने यरूशलम के पूर्व में स्थित E1 इलाके में निर्माण की योजनाओं को कई दशकों तक रोक रखा था। कई देशों और फिलिस्तीनियों का कहना है कि अगर यहां निर्माण होता है तो 2 नेशन समाधान की उम्मीदों का बड़ा झटका लगेगा। उनका मानना है कि इससे वेस्ट बैंक प्रभावी तौर पर 2 हिस्सों में बंट जाएगा और पूर्वी यरूशलम अलग थलग पड़ जाएगा। यूरोपीय देशों और कनाडा ने गुरुवार को जारी अपने बयान में कहा कि वेस्ट बैंक में इस समय गंभीर अस्थिरता है, आम लोगों के खिलाफ इसराइलियों की हिंसा अप्रत्याशित स्तर पर है और फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर पाबंदियां हैं। ऐसे समय में यह फैसला और भी चिंताजनक हो सकता है।

0: जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है और न्यूयॉर्क कैपिटल पर हमले की साजिश के आरोप में महिला गिरफ्तार। जी हाँ, अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने न्यूयॉर्क की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वह अल्बनी में राज्य की कैपिटल बिल्डिंग को बम से उड़ाकर वहां मौजूद सांसदों को मारने की योजना बना रही थी। जी हाँ, अभियोजकों के मुताबिक 35 साल की जेसिका बोवी ने पहले ही इस्लामिक स्टेट के प्रति अपनी वफादारी जताई थी। उस पर एक ऐसे विदेशी आतंकी संगठन को मदद या समाधान देने का आरोप लगाया गया है जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अभियोजकों का कहना है कि बोवी ने इस इमारत की कई बार निगरानी की थी। गिरफ्तारी के समय उसके पास एक नकली बम और एक खराब बंदूक थी। ये दोनों चीजें कथित तौर पर अंडरकवर एजेंटों ने उसे दी थी क्योंकि उन्हें उस पर शक था। क्रिमिनल शिकायत के मुताबिक बोवी के कथित तौर पर अंडरकवर एजेंटों से कहा था कि मैं इमारत का जितना हो सके उतना हिस्सा नष्ट करना चाहती हूं और उसे सेनेटरों को मारना भी चाहती हूं। अभी ये साफ नहीं है कि बोवी अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ेंगी या नहीं। अल्बनी की रहने वाली बोवी ने कथित तौर पर एफबीआई के मुखबिरों के साथ अपनी योजना पर चर्चा की थी। ये कई हफ्तों तक ऐसे एजेंटों के संपर्क में भी रही जो खुद को आईएस के सदस्य बताकर उससे मिले थे।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: charge for something. Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word
1: Brisbane. बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है।
5: वधेरे की फायदी रिहायश की शुरुआत वधेरे करां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
14: से। To everyone,
15: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
16: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
17: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
16: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
17: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
18: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीबा के साथ। दोस्तों मैं हमेशा बात करती हूँ कि कैसे जो रेन साउंड होती है, जो बारिश की आवाज़ होती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। इनफैक्ट मैंने ये भी आपको कहा है, बहुत बार बताया है कि कैसे अगर आपको किसी भी तरह का इंसोम्निया है तो आप रेन वॉइस यानी रेन साउंड को जो है वो उसका म्यूजिक जो है वो प्ले कीजिए और फिर सोने की कोशिश कीजिए। यू आर गना फील सो बेटर। आपको लगेगा वाह, नींद आ रही है, बहुत ही प्यारी नींद आ रही है। इसीलिए मैं अगेन फिर से कहती हूँ कि जब भी बारिश होती है तो सोने का मजा जो है वो डिफरेंट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, एकदम अनपैरल जो है वो हो जाता है। अब यहाँ पर ये बात जो है वो पक्की है और ये हम मैंने नहीं बल्कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने भी मानी है। लेकिन कभी आपने देखा है कि कभी आप बारिश की आवाज का जो म्यूजिक है उसको लगाकर सो गए हो और उसके बाद थोड़ी देर में वही साउंड आपको पकौड़े फ्राई करने वाली साउंड में क्यों तब्दील होती हुई नजर आती है, सुनाई देती है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही लगता है ऐसा, बट नहीं, ये सच में बहुत सारे लोगों को लगता है। कल ही ये बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर एक मीम मेरे सामने आता है और उसमें भी यही लिखा होता है कि यू नो व्हाट, यू आर स्लीपिंग यू नो विद रेन साउंड एंड सडनली इट चेंजेस टू समथिंग इज गेटिंग फ्राइड और समथिंग लाइक। या सच में, मतलब आपको एकदम से ऐसा लगना शुरू होता है कि ये पकौड़े किसने फ्राई करने शुरू कर दिए। मतलब आपने तो वो प्यारी सी बारिश की आवाज का म्यूजिक लगाया था, फिर उसका म्यूजिक ये पकौड़े फ्राई करने की आवाज में कैसे चेंज हो गया। वेल वेल वेल, फिर जब मैंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो सच में ये दोनों आवाजें बहुत ज्यादा सेम है। मतलब बारिश की आवाज और जब कोई चीज फ्राई होती है तो उसकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा सेम है। तो पहले जो इनिशियल आइडिया होता है वो यही होता है कि ओके, हम बारिश का जो साउंड है उसको, उसका म्यूजिक जो है वो प्ले कर सो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पकौड़े खाने का मन कर जाता है क्योंकि अपेरेंटली वो बारिश के साउंड जो है वो आपको पकौड़े की याद भी दिला रही है। सो आई डोंट नो, कभी आपने ये फील किया है जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, वही एक इंडियन बॉर्न व्यक्ति ने एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जी हाँ, अब व्यक्ति बोलना ठीक नहीं रहेगा, ही इज अ वेरी फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोहन पी नायडू, जो कि हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, येल अन्नस में और वहां पर एनयूएस में, और वहां पर उन्होंने एक खोज की है, एक बहुत ही दिलचस्प चीज की। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प चीज। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे ज्यादा दिलचस्प चीजें अगर कोई चीज होल्ड करके बैठी है तो वो है हमारा यूनिवर्स। एंड व्हेन आई से यूनिवर्स, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड अर्थ। जी हाँ, सो एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोहन पी नायडू, बॉर्न इन हैदराबाद एंड एजुकेटेड एट येल अन्नस एंड हार्वर्ड, लेट अस स्टडी ऑन MOMBH1, एन अनयूजुअल अर्ली यूनिवर्स ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व बाय नासाज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जी हाँ, अब आपको नहीं बताया तो नासा की ये जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी टेलीस्कोप है जो काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही है इन नजारों को स्पेस में। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ये है MOMBH1, जैसे कि मैंने बताया, और ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोहन पी नायडू ने इसकी खोज की है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो 160 मिलियन ईयर्स जो है वो बाद में दिखा है, आफ्टर द बिग बैंग। जी हाँ, एंड यू नो व्हाट बिग बैंग इज, राइट? सो ये एक ब्लैक होल स्टार है। जी हाँ, जो रेड स्टार्स, रेड डॉट्स आपको दिखते हैं ब्लैक होल के पास, वैसी ही कोई चीज है, अ मैसिव ब्लैक होल एनवेलप्ड बाय डेंस गैस। जी हाँ, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो एक्सप्लेन कर रही है इसकी रेड अपेयरेंस को, और ये भी कहा गया है कि ये अपने आप में पहली बार देखा गया जो है वो अजीबोगरीब नजारा है। मैंने हमेशा कहा है कि ब्लैक होल्स की जो अपनी थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा गजब की है। नोबडी नोज एग्जैक्टली ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, चीजें जो है वो ब्लैक होल कंज्यूम कर लेता है, लेकिन क्या ब्लैक होल के अंदर अलग अलग डायमेंशंस हैं? वेल, इंटरस्टेलर देखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंटरस्टेलर हमें बहुत कुछ समझाती है इसमें। एंड जैसे मैंने कहा था कि इंटरस्टेलर ही वो मूवी है जिसने ब्लैक होल की पहली पिक्चर हमें दी थी, मतलब हमें ये पता था कि जो थ्योरेटिकली ब्लैक होल जो है वो कैसा होता है, लेकिन वो विजुअली कैसा दिखता है ये इंटरस्टेलर ने हमें बताया था। जी हाँ, वो पहली पिक्चर इंटरस्टेलर की वजह से हमें मिली थी बैक इन 2014। सो जैसे मैंने कहा कि ये डिस्कवरी जो है वो इल्यूमिनेट कर सकती है ग्रोथ को ऑफ अर्ली ब्लैक होल्स, जो कि नेचर जिनका होता है बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस, यू नो, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स, और ये जो लिटल डॉट्स होते हैं खासकर, इनके ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं, और ब्लैक होल के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है ये भी शायद हमें किसी दिन पता चल जाए। बस बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर जो है वो गैसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अलग डायमेंशंस होती है, मतलब यही जो दुनिया है हमारी, हमारी ऐसी ही अलग दुनिया जो है वो डिफरेंट टाइम लैप्स में आपको दिखेगी जब आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे। वी डोंट नो अबाउट इट, बट इतना हमें जरूर पता है कि ब्लैक होल चीजों को कंज्यूम कर लेता है। एंड व्हेन आई से चीजें, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग प्लैनेट्स एंड बिग स्टार्स। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ वक्त हो गया है अब हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ रुख करने का. वेल वेल वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड इज गोल्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा फेवरेट सेगमेंट जिसमें हम पुराने गाने प्ले करते हैं, हम पुराने किस्सों के बारे में बात करते हैं और उन जज्बातों को भी शेयर करते हैं जो कि बहुत रियल होते थे, क्योंकि उस एरा में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रियल होती थी. अब बहुत सारी बनावटी चीज़ें हो गई हैं एंड दैट इज़ द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस एरा. और कभी कभी मेरा दिल करता है कि हाँ, मतलब उस एरा में अगर मैं जा सकती तो क्या बात होती, राइट? मतलब मैं रफ़ी साहब से मिल पाती, किशोरदा से मिल पाती तो क्या बात होती. कितने लेजेंडरी लोग, मतलब ऐसा ऐसी गायकी और जो लिरिसिस्ट जिन्होंने इतने ख़तरनाक और ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स लिखे, उनके बारे में मतलब जानने का मौका हमें मिलता है लेकिन उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाता. अब वो भी एक बहुत ही बड़ी बात है. लेकिन अगेन, अगर हमें वो मौका मिल पाता तो क्या आप जाते? जी हाँ, जरूर मुझे बताइएगा. इसी के साथ जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, सबसे पहला इस सेगमेंट का, वो बहुत ही ज्यादा खास है. उसका नाम है धीरे धीरे चल चांद. जी हाँ, धीरे धीरे चल चांद जो है, ये खूबसूरत सा गाना है. रफी साहब का गाया हुआ नहीं है, लता जी का गाया हुआ है ये गाना. जी हाँ, और जैसे मैंने कहा कि अगेन खूबसूरत सी जो है वो शुरुआत होगी, तो ये गाना सबसे पहले हम प्ले करेंगे और उसके

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक अलग सा और अजीब सा किस्सा भी है जो कि नसीरुद्दीन शाह ने शेयर किया था। जी हाँ, नसीरुद्दीन शाह मतलब नसीर साहब कितने बड़े और जबरदस्त एक्टर है, इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज भी उनकी एक्टिंग आपको एंटरटेन कर रही है। अभी कुछ वक्त पहले ही आपने उन्हें स्क्रीन पर देखा था मैं वापस आऊंगा में। नसीर साहब कहते हैं एक इंटरव्यू के दौरान, जब होस्ट उनसे पूछता है कि क्या कहा था दिलीप साहब ने जब आप दिलीप साहब से मिलने गए थे, जी हाँ, तो नसीर साहब कहते हैं कि मैं एक दिन दिलीप साहब से हिम्मत करके मिलने चला गया और वहां पर दिलीप साहब से जब मैं मिला तो दिलीप साहब ने मुझे कहा कि क्या कर रहे हो तुम मूवीज में, जी हाँ, क्या कर रहे हो तुम फिल्मों में। फिल्मों में शरीफ घरों के बच्चे नहीं आते, तुम इतने अच्छे घर से हो, इतने शरीफ खानदान से हो, तुम्हारे पिता इतने बड़े पद पर हैं दरगाह शरीफ में, तुम्हें आने की क्या जरूरत है। नसीर साहब कहते हैं कि ये सब जब मैंने सुना तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनसे ये पूछ सकूं कि तो फिर आप क्यों आ गए, आप क्या शरीफ खानदान के बच्चे नहीं थे। जी हाँ, और यहां पर दिलीप साहब उन्हें ये भी कहते हैं कि छोड़ दो ये फिल्म, तुम्हारे लिए नहीं है, और फिर वो नसीर साहब को घर भिजवा देते हैं। और ये बहुत पहले की बात है जब नसीर साहब बहुत ज्यादा यंग थे। लेकिन दिलीप साहब ने ऐसा कहा क्यों? क्योंकि दिलीप साहब के बारे में आज दिन तक जितने भी लोगों ने कुछ भी बताया है, कोई भी किस्सा शेयर किया, उन्होंने यही कहा कि कितने जबरदस्त शख्सियत के वो इंसान थे। जी हाँ, मतलब शख्सियत थे वो। और यहां पर उनके विपरीत, मतलब यहां पर एक ऐसी चीज, मतलब एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट भी सामने आया जहां पर दिलीप साहब के बारे में हमने कुछ ऐसा सुना। मतलब नसीर साहब को ये कहना कि शरीफ खानदान के बच्चे नहीं आते फिल्मों में, ये बड़ी अटपटी बात थी। लेकिन अगेन, नसीर साहब जब वो इंटरव्यू दे रहे थे और जब वो होस्ट के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने एक ही चीज कही, कहते मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर मैं पूछना जरूर चाहता था उनसे कि अगर शरीफ खानदान के बच्चे यहां नहीं आते तो आप क्या कर रहे हैं आप। नसीर साहब कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि शरीफ खानदान के बच्चे फिल्मों में काम नहीं करते और फिर उन्होंने मुझे घर भिजवा दिया। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। वेल, वी आर गोना टॉक अबाउट इट कभी और, मैं इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से रिसर्च करके आपसे बात करूंगी। बट इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, क्योंकि दिलीप साहब की शख्सियत ऐसी थी नहीं। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, तो अब तो फूल खतों में नहीं जाते, अब फूल जो है वो सीधा चले जाते हैं और उसमें छोटा सा नोट होता है। जी हाँ, पहले खत बड़े होते थे, फूल छोटा होता था, अब फूलों का गुलदस्ता बड़ा हो गया है और नोट छोटा हो गया है। कैसे हमने लूज कर दिया उस प्योरिटी को, जाए मतलब वो इनोसेंस, वो प्योरिटी जो खतों के थ्रू आती थी, वो अब हमारे पास नहीं है। सो लेटर्स लिखना जरूरी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लेटर्स को वापसी करनी चाहिए। मतलब कितना प्योर वे है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, एंड कितना कितना नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है ये लेकर आता है हमारे लिए, प्लस एस्थेटिकली इज ऑल्सो वेरी प्लीजिंग, राइट। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपको किस्सा सुनाने वाली हूँ, राजेश खन्ना का, अंजू महेंद्रू का और साथ में संजीव कुमार का। जी हाँ, अब संजीव कुमार जो है वो आपके ठाकुर हैं और वो कितने जबरदस्त एक्टर रहे हैं, अगेन मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे एक्टर्स ही अपने आप में इतने लेजेंडरी रहे हैं कि मैं इनके बारे में कुछ कहने की कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है मेरे पास शब्द ही नहीं होते उनकी तारीफ करने के लिए। सो ये होता है इसलिए कि अंजू महेंद्रू जो कि रिलेशनशिप में थी राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और राजेश खन्ना जो है वो अंजू महेंद्रू को बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि उनका जो प्यार था वो किसी तरह से इतना प्रोटेक्टिवनेस में बदल गया था, मतलब वो इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करते थे अंजू महेंद्रू को लेके, और इतने ज्यादा पोजेसिव फील करते थे कि वो चीज लोगों को नजर आनी शुरू हो गई थी। जी हाँ, और पोजेसिवनेस जो है वो अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा हो जाए तो वही गड़बड़ कर देती है। जी हाँ, अब होता कुछ ऐसा है कि अंजू महेंद्रू और साथ में संजीव कुमार की दोस्ती जो है वो बढ़ती है, और वो दोनों दोस्त ही होते हैं। जी हाँ, लेकिन राजेश खन्ना को लगता है कि नहीं, ये दोनों दोस्त नहीं है, इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है, तो वो संजीव कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। संजीव कुमार ने भी इसके बारे में कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अंजू महेंद्रू ने भी कहा कि वो मेरे लिए अंकल जैसे हैं, अच्छे अंकल जैसे, मेरा उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि वो मेरे लिए अंकल जैसे हैं और वो मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, दैट्स इट। बट राजेश खन्ना का प्यार जो है वो इतना ज्यादा परवान चढ़ गया था कि उनके दिमाग में शक ने घर कर लिया था। फिर क्या था, एक पार्टी में जब राजेश खन्ना, अंजू महेंद्रू और संजीव कुमार साथ में एक ही छत के नीचे आते हैं, तो वो संजीव कुमार को थप्पड़ मार देते हैं। जी हाँ, वो थप्पड़ ही मार देते हैं संजीव कुमार को। आप खुद सोचिए कि कितनी अजीब बात थी, क्योंकि राजेश खन्ना से काफी सीनियर एक्टर जो हैं वो संजीव कुमार रहे हैं ऐसे में। तो फिर अंजू महेंद्रू वहां पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती हैं, वहां पर वो चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है संजीव कुमार को, लेकिन संजीव कुमार कुछ नहीं करते। राजेश खन्ना जो है वो इस पूरे सिचुएशन में मैनिएक वाला काम जो है वो कर रहे होते हैं। फिर क्या, उसके बाद वो एक और हरकत करते हैं। जी हाँ, उनको पता था कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और ये रीजन रहा था कि संजीव कुमार ने कभी शादी की ही नहीं। वो हेमा मालिनी को पसंद करते थे और हेमा मालिनी को कभी वो पूछ ही नहीं पाए, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र को प्यार करती थी। बस फिर क्या था, राजेश खन्ना को ये बात पता थी कि हेमा मालिनी को पसंद करते हैं संजीव कुमार, तो उन्होंने एक जगह पर जहां पर वो तीनों ही साथ में थे, वो हेमा मालिनी का हाथ पकड़ते हैं और संजीव कपूर कुमार के सामने वो हेमा मालिनी को लेकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर कि संजीव कुमार, ये देखकर कि राजेश खन्ना ने ऐसी हरकत की जानबूझ के, क्योंकि वो उनको जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब इतना पेटी कौन बिहेव करता है यार, राजेश खन्ना इज सच अ सुपरस्टार, बट आप हरकतें देखिए, और वो वहां से उन्हें लेकर चले जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, किसी को किसी से प्यार है और जिससे उसको प्यार है उसको लेकर, उसका हाथ पकड़कर कोई वहां से चला जाए, कैसा फील होगा। संजीव कुमार ने वहां भी कुछ नहीं कहा, बस वो वहां से चले गए। लेकिन यहां पर इस पूरी सिचुएशन में क्या पता चलता है, यहां पे पता चलता है कि संजीव कुमार कितने बड़े इंसान थे। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी बहस नहीं की, उन्होंने रिटालिएट नहीं किया, वो कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया। और राजेश खन्ना इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी, उनकी हैंडसमनेस के इतने चर्चे होने के बावजूद भी, ये वो सो पेटी कि उन्होंने अंजू महेंद्रू की जिंदगी तो गड़बड़ की ही, लेकिन यहां पर संजीव कुमार के साथ भी बहुत सारी छेड़ाछाड़ी की। जी हाँ, अब अगर आप लोग राजेश खन्ना के फैन हो तो आप मेरी तरफ बताइएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वेल, स्टार्स जो हैं वो फिल्मों के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं उनके बारे में, लेकिन राजेश खन्ना लेट आना उनका एक वर्चू तो था ही, लेकिन पेटीनेस और जेलिसी और पजेसिवनेस ये भी बहुत ही रिमार्केबल बात है उनके लिए, रिमार्केबल इन अ बैड वे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ, इस गाने का नाम है अगर मैं पूछूं जवाब दोगे। ये गाने का रिकमेंडेशन हमें आया है हमारे
बॉस मिस्टर जतीश पूरन जी की तरफ से। जी हाँ, बहुत ही खास फरमाइश नहीं कहेंगे, रिकमेंडेशन कहेंगे आई है। सो थैंक यू सो मच सर। गाना बहुत ही खूबसूरत है, शिकारी मूवी का है, 1963 में आई थी, रफी साहब और लता जी ने इसे गाया है। और ऐसे रिकमेंडेशन अगर हमें मिलते रहे तो क्या ही बात हो जाएगी हमेशा। सुनते हैं इस गाने को।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही खूबसूरत गाना एंड डेफिनेटली ग्रेट ग्रेट ग्रेट रिकमेंडेशन सर. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है. फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे की शाम को हमने कामयाब बनाया हो आपके लिए, खूबसूरत बनाया हो आपके लिए, यही हमारी जो है हम होप करते हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. अब आपसे मिलना होगा कल टॉप 10 हॉट 10 में. और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, मैं पल दो पल का शायर हूं. आई डोंट नो बट ये गाना मेरे दिमाग में बस कर रहा था ना, आई वाज लाइक इसी के साथ हम एंड करेंगे अपने प्रोग्राम को. सो हियर इट इज फॉर यू. बाय, सी यू, टाटा.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारे खाते में सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Madam, I am your only Adam.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। निजी घर से मिली भारी मात्रा में जब्ती। जी हां, ब्रिस्बेन पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस ने एक बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए कंगारू पॉइंट के एक घर पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में कैश और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। वहीं ब्रुकफील्ड इलाके में घटना के बाद सुरक्षा बढ़ी। ब्रिस्बेन के ब्रुकफील्ड इलाके में हुई एक घटना के सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट

0: में पेश किया है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं लॉगन अस्पताल में समय से पहले जन्मी बच्ची ने रचा इतिहास। ब्रिस्बेन के पास लॉगन अस्पताल में महज 21 हफ्ते में जन्मी बच्ची यानी कि 350 ग्राम वजन ने तमाम मेडिकल आशंकाओं को मात देकर अब पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापसी की है। इसे एक चमत्कार की तरह देखा जा रहा है। वहीं वीकेंड पर मौसम का मिजाज बदलने की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में इस वीकेंड हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी के साथ फर्स्ट नेशंस क्लीन एनर्जी सम्मेलन की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर एक सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसमें स्थानीय समुदायों को क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट से जोड़ने पर चर्चा हो रही है। वहीं सड़क सुरक्षा अभियान में सख्ती। क्वींसलैंड पुलिस ने ब्रिस्बेन और आसपास के हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक नया चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, वाराणसी में असर। वाराणसी में गंगा नदी का पानी बढ़ने से कई घाट डूब गए हैं। मणिकर्णिका घाट पर शब्दाह के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं और निचले इलाकों में लोगों को संभल कर रहने को कहा गया है। वहीं मुंबई के कुर्ला में क्रेन हादसा। मुंबई के कुरैशी नगर इलाके में काम के दौरान एक बड़ी क्रेन अचानक गिर गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चंडीगढ़ में जल भराव पर लोगों का गुस्सा। भारी बारिश के बाद चंडीगढ़ के कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं। इससे परेशान होकर लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की। वहीं रेलवे की नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। भारत रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए एक और कदम उठाया है। भागलपुर से अहमदाबाद के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। वहीं पंजाब में कौमी इंसाफ मोर्चा का बंद। जी हां, सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर पंजाब में आज कई जगह बंद रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हालांकि एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को रास्ते में नहीं रोका जा रहा है। इसी के साथ छात्रों के लिए फ्री AI सब्सक्रिप्शन। गूगल ने भारतीय कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी योग्य कॉलेज छात्रों को पूरे एक साल के लिए अपनी गूगल AI की प्रीमियम सर्विस बिल्कुल फ्री में दे रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले कीव पर भीषण रूसी हमले। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के कई इलाकों पर रूस ने देर रात हवाई हमले किए। इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और भारी नागरिक नुकसान की खबर सामने आ रही है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है और उन देशों को भी चेतावनी दी है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में भी हलचल देखी जा रही है। वहीं UAE ने ईरान के साथ व्यापार रोका। अमेरिकी दबाव और आपसी तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने ईरान के साथ अपने व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने का ऐलान किया है। वहीं वेस्ट बैंक में फिर बढ़ा तनाव। वेस्ट बैंक के विभिन्न हिस्सों में रात भर चले सैन्य अभियानों और झड़पों के कारण कई लोग घायल हुए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने वहां राहत सामग्री पहुंचाने में आ रही दिक्कतों पर चिंता जताई है। इसी के साथ दक्षिण सूडान में राहत कर्मियों की सुरक्षा पर चिंता। संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने अलर्ट जारी किया है कि दक्षिण सूडान में लगातार हिंसा के कारण राहत कार्य में जुटे कर्मचारियों की जान को खतरा बना हुआ है, जिससे आम लोगों तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों में उछाल। वैश्विक स्तर पर बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और ये अपने पिछले 3 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले महिला हॉकी विश्व कप में भारत की जीत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। इसके साथ ही टीम का अलग राउंड तय हो गया है। वहीं कार्लोस अल्कराज की टेनिस में वापसी। 4 महीने तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन से मैदान पर वापसी करने की पुष्टि कर दी है। वहीं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, भारत की पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने शानदार खेल दिखाते हुए बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे एक खास आंकड़े तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ मैक्स वेरस्टैपन का रेड बुल के साथ नया करार। फॉर्मूला 1 रेसर मैक्स वेरस्टैपन ने अपनी टीम रेड बुल के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब वे साल 2030 तक इसी टीम के लिए रेसिंग करते दिखेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।
6: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
8: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
9: Better together.
10: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है।

सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2000.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: Adam. I am your only Adam.
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

अमित शाह ने कांग्रेस से तिखा हमला किया है। तिखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम दियां सिर्फ दो पौड़ियां गाउण दा फैसला करके एक बार फिर तुष्टिकरण की राजनीति नूं दोहराया है। शाह ने कहा है कि 1937 विच कांग्रेस वल्लों लिया गया यही फैसला देश की वंड की नींह बनिया। वंदे मातरम की 150वीं वरेगांठ के मौके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्र सरकार ने यह फैसला लैके इस इतिहासिक गलती नूं सुधारिया है कि वंदे मातरम का पूरा गीत सारे सरकारी प्रोग्रामा विच गाया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री ने कांग्रेस के इस फैसले नूं तुष्टिकरण की राजनीति और बंकिम चंद्र चैटर्जी ते आजादी घुलाटिया का अपमान करार दिता ते देशवासियों नूं इस विरुद्ध आवाज बुलंद करन दी अपील कीती है। शाह ने कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक हैरान करन वाला ते देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 1937 विच उन्हां दी पार्टी वल्लों लए गए फैसले तो बाद महान गीत वंदे मातरम दियां सिर्फ दो पौड़ियां गाउण दा फैसला कीता गया है। शाह ने कहा है कि पूरे देश नूं याद रखना चाहिए कि 1937 विच कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानां नूं खुश करन लई वंदे मातरम नूं दो हिस्सों विच वंड दिता सी जिस कारण देश दी वंड दी नीं रखी गई सी। इही ओ थां है जदों दो राष्ट्रीय सिद्धांत नूं ताकत मिली जिस दे नतीजे वजो अंत विच देश दी वंड होई ते पाकिस्तान दे जन्म दा राह पदरा होया। उधर 1984 के सिख दंगिया के दोषी साबका संसद मैंबर इंडियन नैशनल कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार की मौत हो गई है। एनआई के सूत्रों मुताबिक सज्जन कुमार सेहत खराब होने कारण दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लिया गया जिथे पहुंचते ही अस्पताल डॉक्टर ने उस मृतक करार दिता। फिलहाल सज्जन कुमार की मौत की अधिकारित तौर पर पुष्टि नहीं हुई सी कल तक पर हुण हो गई है। सूत्रों मुताबिक सज्जन कुमार वल्लों अपनी पत्नी के बीमार होने कारण पैरोल की अर्जी लगाई गई सी जिसकी सुनवाई होनी सी। इस सुनवाई तो पहला ही सज्जन कुमार की मौत हो जाने की खबर मिल गई। जिक्रयोग है कि सज्जन कुमार 1984 के सिख

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम ते चार छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए। देखो सैफ अली खान ते शान लगभग दो दहाके बाद ना फिल्म हैवान दे नाल एक बार फिर तो इकट्ठे नजर आए है। जुगलबंदी बहुत शानदार है, एक शानदार एक्टर ते एक शानदार सिंगर है। फिल्म दा पहला गीत है जिहड़ा मेरे हीरो है वो हाल ही विच रिलीज होया है ते इसने फैंस नूं एक बार फिर तो इस जोड़ी दी शानदार संगीतात्मक जुगलबंदी दा तोहफा दित्ता है। गाने तो पहला ही खूब गाने नूं प्यार मिल रहा हैगा कि फिल्म रिलीज होने तो पहला ही, तो मैं सोचा कि क्यों ना हुण मौका इहो जिहा हैगा है तां नज़र पाईए जां सैफ ते शान ने म्यूजिकल चार्टर्स विच अपना जलवा बिखेरिया सी, कट्ठे कट्ठे आए सी। करिए ना उहनां दी गल तां करदे आं, पर पहलां सुणो एक गीत।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एम ते 4-6 संदेश चौलक दे नाल सी बने होए। इस तो बाद जेड़ा आंदा हैगा है गीत बारे ने पहला फिल्म बारे दसती हाँ, तो फिल्म है जी हम तुम बहुत सोहनी फिल्म हैगी है। हुण तुसी जे सर्च करोगे गूगल ते तो तुहानू पूरा डाटा मिल जाना हैगा है हम तुम दा। मैं नहीं दसदी, तुसी एक बार सर्च करो तो फिर मैनू मैसेज करो। तो इसका गाना है लड़की क्यों, सैफ अली खान दे सहज ते बेफिक्र अंदाज वाले करण नूं इस गाने विच शान दी मधुर ते दिलकश आवाज दा बेहतरीन साथ मिलिया सी। रानी मुखर्जी दे नाल सैफ दी चुलबुली केमिस्ट्री ते गाने दे गलबात वर्गे बोल ने लड़की क्यों नूं सैफ ते शान दे सब तो यादगार कोलैबोरेशन दे विचों इक बना दिता सी।
1: Show mercy on it.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks. And we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
4: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

हाँ जी आया नु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरे रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोनी वंसन वन एम ते चार चे संदेश अलग दिन से बने हुए। अगला जेड़ा गाना हैगा है वो है जी मेरे हीरो है वो, जिस दी स्टार्टिंग दे विच गल कीती थी।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिन आप से बने हुए। देखो इन्निया सारिया चीजा बारे मैं थोड़ा दसता हैगा, इन्ने सारे गीतां बारे मैं थोड़ा दस दिता हैगा है जेडे सैफ अते शान दे इकट्ठे आए ते बहुत ज्यादा पसंद किए गए दर्शकों वालों। जिवें सब तो पहला दिल चाहता है तो वो लड़की है कहां, फिर हम तुम तो लड़की क्यों, फिर सलाम नमस्ते तो माए दिल गोज, ते फिर हे शोना फिल्म हैगी है तारारम पम, ते फिर उस तो बाद आंदा है जी मेरे हीरो है वो हैवान फिल्म। तो हुण तुसी ये दसो कि इस दे विचों केड़ा गीत थानू बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुसी चाहुंदे है क्यों कि होर इन्हां दी दोनों की जुगलबंदी इकट्ठी देखण मिले, तो कॉमेंट करो, मैसेज करो, मेल करो, जो भी करो, पर जुड़ो साडे नाल।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार ले लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com. Mixing in the house.

0: नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: OMSOG, caring with dignity.
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? Ye grocery pass wale shop se le sakte hai na?
6: Yes, baby, but no compromise with quality and health. Hum jayenge sirf MC's Indian and Island Food.
5: Aisa kya khas hai wahan?
6: Sab kuch. Quality spices, lentils, rice, flour aur frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane ke best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck aur fresh local produce भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
7: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs.
8: Priya, next month mama ka birthday. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
9: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
8: Acha? Wo kya?
9: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus foreign exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
8: Lekin mama ke liye money lene kahin dur jana possible nahi hoga.
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: है मेरी हमरथ, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: नाचे सारे जवां आह नाचे नाचे।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तुमने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, होम्स ऑल असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। होम्स ऑल वेबसाइट homesor.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। होम्स ऑर्ग असिस्टेड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: OMSOC, caring with dignity.
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? Ye grocery pass wale shop se le sakte hai na?
5: Yes, baby, but no compromise with quality and health. Hum jayenge sirf MC's Indian and Island Food.
4: Aisa kya khas hai wahan?
5: Sab kuch. Quality spices, lentils, rice, flour aur frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane ke best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck aur fresh local produce bhi rakhte hain. Saath hi kitchenware and disposable plates ki large range kisi bhi function ke liye.
4: Are wah, intelligent ho gayi ho.
5: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs.
7: Priya, next month mama ka birthday. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
8: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
7: Acha? Wo kya?
8: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
7: Lekin mama ke liye money lene kahin door jana possible nahi hoga.
8: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल paperwork, merit certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

जी मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और मैं हूं परमानंद। है संगीत सरगम नामक कार्यक्रम और हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय लगभग 24 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और शुरू हो रहा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। आज 22 तारीख है, 22 तारीख अगस्त सन 2026। सुबह का बेला है और मौसम बहुत खूबसूरत है। आज मौसमी दफ्तर ब्रिजबन ने हमें निम्न मौसम की खबर प्रदान किए हैं, जिसके अनुसार 6:12 पर सूर्य उदय हुआ है। 5:30 ब्रिजबन में सूर्यास्त होगा। दिन में आकाश पर समय समय पर घटा छाई दिखाई देगी, ऐसे मौसम साफ रहेगा। 21 रहेगा दिन में, रात्रि को 12, 6 हवा का रफ्तार। इस समय लगभग 13 डिग्री तापमान है साउथ ईस्ट में और इप्सिच में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी। 21 अधिक से अधिक तापमान, कम से कम 8, हवा का रफ्तार 6 और संतोष में आकाश पर घटा छाई रहेगी। 19 दिन में, रात्रि को 13, हवा का रफ्तार 8 और गोलकोश में इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ यहाँ भी 21 है, रात को 13, हवा का रफ्तार 6। फिर हम आपको ले चलते हैं फिजी द्वीप और नेंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो बड़ी बारिश हो रही है। 23 दिन में, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 6 और 6:25 पर सूर्य उदय हुआ है। 6:02 पर सूर्यास्त होगा। लंबासा में आकाश पर घटा छाई हुई है। 26 दिन में, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 23 और सुबह में हल्की बारिश हो रही है। 22 दिन में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 23। वेलिंगटन में ज्यादातर धूप निकलेगी। 12 दिन में, रात्रि को 10, हवा का रफ्तार 47 किलोमीटर/घंटा। ऑकलैंड में आकाश पर घटा छाई रहेगी। 16 दिन में, रात्रि को 10, हवा का रफ्तार 8। 6:55 पर सूर्य उदय हुआ है। 5:50 पर सूर्यास्त होगा। अमृतसर में धूप निकलेगी और 34 मैक्सिमम 28 मिनिमम 6 विंड स्पीड। न्यू दिल्ली में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी एंड पोटेंशियली हेवी रेन। 34 मैक्सिमम 28 मिनिमम 11 विंड स्पीड। 5:55 पर सूर्य उदय होगा। 6:55 पर सूर्यास्त होगा। मुंबई में हल्की बारिश होगी। 29 यानी कि 29 अधिक से अधिक तापमान, कम से कम 27, हवा का रफ्तार 21। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। और मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। गॉड ब्लेस यू। और अमला जी सबको नमस्ते कहती हैं और साथ में देखते हैं लोग, देखिए कितने तड़के उठ जाते हैं, सुनने लगते हैं रेडियो। तो मित्रों, बस यही है, स्टूडियो का नंबर याद दिला दें, 3279-1701, दोबारा 3279-1701। और अगर आप कुछ बातें करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 0411-127-035। तो ये है कुछ ऐसे ही बातें और कुछ और बातें हम करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज सुबह का पहला गीत से। पहला गीत जो आज मैं लिया हूँ वो बहुत प्यारा सा गीत है और इसे अदा कर रहे हैं सोनू निगम जी, कविता कृष्णामूर्ति जी। जब तुम आ जाते हो सामने, कितने कितने यादें आती हैं ना, किसी जब कोई सामने आ जाता है उनके पिछले जीवन का सफर, रवि का, और फिर देखते हैं कैसा देखने में लगता है, लगती है, क्या सोच रहे हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, ये सब बातें हमें याद आती हैं। तो चलो आप भी याद करें, मैं भी याद करूँ। डीवट को एंजॉय कीजिए।

0: जय मित्रों, ये फिल्म महाराजा का गीत था जो अभी आप सुन रहे थे, और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलें विज्ञापन की तरफ। तो आज का लाइव विज्ञापन में ये पहला।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: अब इस समय 17 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, और आगे बढ़ते हुए कुमार सानू साधना सरगम जी आ रही हैं इस मजेदार डिबेट के साथ।

0: जय मित्रों, आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत संगीत था जो भी आप सुन रहे थे रेडियो ब्रिजबानी पर संगीत सरगम नामक कार्यक्रम में। उम्मीद कर रहा हूँ गीत आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और क्या कमाल की एक्टिंग टबू जी ने की है इस फिल्म में, और साजन की बाहों में। और चंद्र स्वामी साहब, दिस इज़ वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स जो भी हम बजा रहे थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक और खबर के साथ। रेडियो ब्रिजबानी, आपकी अपनी पहचान, जिसका प्रसारण हम 1701 AM के माध्यम से 17 माइल रॉक्स ब्रिजबेन ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं।
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win.
3: असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हैं अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हैं। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हैं। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हैं। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: तो प्रिय श्रोतागण, हम आगे बढ़े अगला गीत के साथ। और अगला गीत जो है समीर जी की रचना है, कुमार सानू जी की खूबसूरत आवाज में आशिका गाना लेकर आया हूँ, सांसों की जरूरत है जैसे।

जी मित्रों, फिल्म आशिकिया का बहुत ही लाजवाब गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू जी की आवाज़ क्या है भाई, क्या बोलूं मैं, बहुत ही बढ़िया। और अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए चलें सुबह का ट्रेन, सुनते हैं मज़ेदार गीत।

0: जी मित्रों, बहुत प्यारा सा एक गीत अभी आप सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा। एक भेंट वार्ता हम लेकर आएंगे करीबन 7:45 बजे, जब हम अरविंद दत्त जी से कुछ बातें करेंगे, जो सनातन सेंटर पर भजन संग्रह होने जा रहे हैं उसके विषय में। फिलहाल स्टूडियो में 7 बजे हैं, और जब 7 बजता है तो एक बार फिर हम मौसम के खबर को दोहराते हैं। और आज के मौसम के जो खबर है कुछ इस प्रकार है, ज़्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी और 19 से लेकर 21 डिग्री तापमान ब्रिस्बेन में दिन में रहेगा, और रात्रि को 8 से लेकर 13। ये कुछ हमारे लोकल मौसम के खबर हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा। हम चलते हैं 1-2 विज्ञापन के तरफ, उसके बाद पुराने गीतों को जारी करेंगे, फिर जितेश जी के साथ होकर एक छोटा सा बातचीत हम करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डीजीसेल का ये खबर।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw.
2: और जानकारी के लिए जिसे जानना अच्छा है, एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
0: जय मित्रों, आगे बढ़ते हैं पुराने गीतों के कार्यक्रम के साथ, और पुराने गीतों में आज का जो पहला गीत है आपको सुनाने जा रहे हैं मुकेश जी के आवाज में, जाना तुम्हारे।

0: घर में।
1: जी मित्रों, फिल्म ससुराल का बहुत ही लोकप्रिय गीत आप सुन रहे थे। चलें एक विज्ञापन, एक और गीत, फिर हम जितेंद्र जी के साथ कुछ बातें करेंगे। तो चलें सुनते हैं एक खबर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट, सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिलक्रेस्ट। समाज, संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति, संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त, 04।

0: 52584926 ग्रैंड भजन नाइट
1: जी मित्रों, ग्रैंड भजन नाइट के विषय में कुछ जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे 7:45 बजे, जब अरविंद साहब हमारे बीच आएंगे और कुछ बातें हम उनसे करेंगे इसके विषय में। अब चलते हैं, वहाँ कहाँ चलते हैं, आपको ले चलते हैं एक ऐसे गीत जो किशोर दा ने अदा किया है, लहरों की तरह यादें। ये इतना प्यारा गीत है, हर वक्त हम इसे बजा सकते हैं। बीते कल के बारे में, आज क्या, भविष्य में क्या है, किस तरह से हम किसको याद करेंगे, कौन माहौल में रहकर याद करेंगे, पहले सुनाता हूँ, इसके बाद जतीश जी से कुछ बातें करेंगे।

0: जय मित्रों, लहरों की तरह यादें फिल्म निशान का बहुत ही लोकप्रिय गीत किशोर कुमार जी की आवाज में आप सुन रहे थे। और इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियो की घड़ी में लगभग 13 मिनट हो रहे हैं 7:00। मैं हूं परमानंद, और खुश की बात है कि बहुत दिनों के बाद एक मौका मिला जबकि जतीश भाई यहीं पर थे स्टूडियो के आजू बाजू में, उनसे कुछ बात करने का। जतीश भाई, स्वागत है आपका, नमस्कार।
1: नमस्कार परमा भाई, थैंक यू वेरी मच। और हमारे प्रिय श्रोताओं, आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सबको सत श्री अकाल।
0: जतीश भाई, ऐसे दिन पर आपको मैं आमंत्रित किया हूँ स्टूडियो में, जबकि सबको मालूम है, अखबार में छपे हैं, सोशल मीडिया पर, और खास हमारे लोगों के लिए जो रेडियो ब्रिजबानी से जुड़े थे और जुड़े हैं अभी भी और जुड़े रहेंगे, कि प्रभा जी जो हमारी एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटर, अनाउंसर, एक प्रोड्यूसर, अब हमारे बीच नहीं रही, तो ये बड़ा शोक का विषय है। मैं सोचा कि आपको भी ले लेता हूँ साथ में, कुछ हम इसके विषय में बातें कर लें।
1: हमारी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है परमा भाई। आंटी जी हमेशा कहती थी कि हाँ बच के रहना, मैंने आपका डायपर चेंज किया हूँ। मुझे याद है कि अंकल जी जो थे, माई फादर वॉज ए सुपरवाइजर जब वो पुलिस फोर्स ज्वाइन किए थे
0: जी,
1: एंड तो हम जो पुलिस लोग होते हैं एक फैमिली बन जाते हैं, और बहुत पुरानी बातें हैं ये सब। जब मुझे थोड़ा थोड़ा आंटी जी का याद है, ये बचपना रहा जो, जब मैं बचपन में था, अपना बचपना में, फिर आस्ते आस्ते ऑफकोर्स पुलिस में थे थ्रू आउट, और या तो हमारा हिस्ट्री बहुत पुराना है। और आंटी जी थोड़ा बीमार पड़ गई थी, एज यू नो रेडियो, शी इज़ अ वेटरन अनाउंसर, फिजी में बहुत दिनों तक रेडियो फिजी में, क्या लेडीज का जो प्रोग्राम हुआ करता था,
0: बहनों की
1: जो, हाँ ये सब हो, शी वॉज द मेन पर्सन। एंड उसके बाद में शी वर्कड दूसरे दूसरे स्टेशन में भी, कुछ मेलबर्न में, देन फिर हमारे साथ रेडियो बिजवानी में। तो बहुत पसंद करती थी, बिकॉज कहती थी कभी ऐसे सोचा नहीं था कि आप बचपन में मेरे साथ और फिर बुढ़ापे में भी, ओल्ड एज में भी आप हो जाएंगे मेरे साथ। जोक किया करती थी, आई सो अबाउट 4 weeks ago, 5 weeks ago, और मैंने गया, कुछ टाइम बिताया, फिर एक दो बार गया, उसको देखा मैंने, छीन गई थी मुझे, उन्होंने कहा अरे आपको कैसे भूल सकता, पूरन के बेटा है। सो जो पुराने पुराने यादें याद है ना उन्हें, wonderful person, both the both couple were wonderful people, very community minded, और अफसोस की बात है, लेकिन फिर मैं जब सोचता हूँ कि चलो she is not suffering, she is in a better place, what else can you say? Ranu, I don't know if you're listening or not, we are all here for you, और क्या कहूँ यार, कुछ कहना भी मुश्किल पड़ता है।
0: जितेश भाई, बहुत सारी यादें हैं, और कहाँ नहीं उन्होंने रेडियो में काम किया ना, जैसे आपने कहा न्यूजीलैंड में भी कर रही थी, और साथ में जब अपने प्रोग्राम लेती थी तो रेसिपी वगैरह बहुत देती थी, और स्वास्थ्य लाभ वगैरह ना, किस तरह से महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा उसका ध्यान खींचा था, और वो बहुत कुछ उसके विषय में रेडियो के माध्यम से।
1: धर्म क्षेत्र में अगर आप देखें तो शी वॉज वेरी वेल वेस्ट, और साथ साथ में बहुत सुंदर गाना भी गाती थी, और एक्चुअली शी वॉज अ एल्डर गुरु बहन, हमारे एक ही गुरु, और तो एनीवे इट्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बट सच इज लाइफ परमा भाई, यही हमारी हकीकत है, यही जिंदगी है, आज है तो कल हमें जाना है कि नहीं?
0: बात आप कह रहे हो, बात में सच्चाई है, लेकिन कभी हमें सोचते नहीं ना।
1: नहीं, अब सोचना नहीं चाहते ना।
0: हाँ ये बात है,
1: nobody wants to think about it,
0: कि एक दिन जाना है,
1: जाना है। अगर उतना हमेशा हम याद रखेंगे तो शायद जमाना कुछ और बदल सकता है, लेकिन हम इतने बहते चले जाते हैं। आंटी बहुत अच्छी अच्छी बातों लेकर आती थी, बहुत कुछ, हम प्राइवेटली बहुत बातें करते थे, बिकॉज काफ़ी दूर से आती थी प्रोग्राम करने, और जब हम बैठते थे तो कुछ ना कुछ फैमिली की बात है, शी वॉज अ फैमिली ना
0: जी जी,
1: नहीं, ये है अनुकर का फैमिली, ये सब हम साथ में पले ना, अनुकर भाई जो है
0: जी,
1: हाँ सब रिलेटेड है ये लोग, और हम सब पुलिस में साथ में पले थे, तो थोड़ा एक डिफरेंट एक रिलेशनशिप हो जाता है। जी हाँ,
0: क्या करेंगे,
1: जी हाँ
0: करेंगे, बस यही ईश्वर से प्रार्थना जतीश भाई कि उनकी आत्मा को शांति मिले जहाँ भी हैं जैसे भी हैं, और हमारे जितने श्रोतागण प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको बस यही बतलाना है कि प्रभा मिश्रा जी हमारे बीच नहीं रही और उनका निधन हुआ है, और अभी तो हमें ये नहीं मालूम आगे क्या होगा, अंतिम क्रिया वगैरह के विषय में, और बस यही है जीवन में हमेशा जतीश भाई आप कहते हो अमिता जी के साथ प्रोग्राम में और अपने खुद के प्रोग्राम में, मैं भी यही राह पे चलने की कोशिश करता हूँ, लोगों को यही सलाह देता हूँ कि भाई जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम जीवित हैं, मान सम्मान से पेश आए, छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, और उनके अच्छाई के लिए ही काम करें, किसी का ऐसा ना करें कि उसको किसी तरह से हम बर्बाद करने पे तुले रहे ना, तब मालिक कहता कि तुम्हारा दिल जब साफ है, सब कुछ सच्चा है, तो वो भी कदम कदम पर मदद करेंगे सब चीज़ से, और जब आप चले जाओगे, कोई नहीं चाहता कि किसी को गुणगान गाए, लेकिन एक मिसाल बनकर जा रहे हो आप ना।
1: जी हाँ, बहुत कुछ ऐसे है, कल मुझे सुन रहा था प्रोग्राम, थोड़ा मैं ऐसे जब जा रहा था तो नीलम का प्रोग्राम मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, माज रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, तो उसमें लेसन था कि बाहर का उतना प्रॉब्लम नहीं जितना भीतर को साफ करना है, इनसाइड को ना
0: जी।
1: तो वेरी वेल शी ब्रॉट देयर, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला देखो यही तो है जिंदगी, अपना साफ रखो अंदर सब कुछ भैया, कोई किसी का हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे, छोड़कर जाना ही है, अगर ये बात हम याद कर ले हमेशा तो शायद हम और अच्छी तरह से समाज में पेश आएंगे।
0: सही है, और कहते हैं ना कि अंदर जो है वही जो बाहर चेहरे पर हो वही अंदर होना चाहिए
1: जी। तो प्रभा मिश्रा वॉज वेरी गुड एट दैट, सबसे बहुत मिलनसार, मिलजुल कर, और ये नहीं कि शी इज नॉट हियर देन वी टॉकिंग अबाउट इट, इट्स नॉट दैट, बट इट्स अ फैक्ट, आई मीन अच्छा अच्छा सलाह लेकर आती थी रेडियो पर, और शी लिव दैट लाइफ टू, और बहुत अच्छा लगा, दोनों परानी बहुत प्यार में रहते थे, ओह माय गुडनेस,
0: हमेशा सभी जगह
1: साथ जाते थे, सच अ लवली कपल, यस
0: दे आर वेरी गुड,
1: दिस एंड ऑफ अनदर चैप्टर नाउ, हां
0: हां
1: हां, परमा भाई हमारे लाइफ में भी बहुत चैप्टर्स एंड हो रहे हैं यार, आपने नोटिस किया?
0: जी हां हम सोचते रहते हैं ना, बैठे बैठे सोचते रहते हैं,
1: मुझे यार जब हम स्कूल में थे, बच्चे थे, जब वो आते थे सुई लगाने ना
0: जी,
1: तो मेरा जैसे पारी आता मैं दौड़ के पीछे भाग जाता फिर
0: अच्छा
1: लास्ट जा, बदमाश तो था मैं, लेट्स फेस इट
0: अच्छा,
1: और लेकिन एक समय आता है कि और कोई है नहीं आगे,
0: फिर आप ही हैं, सुई लगवाना पड़ेगा
1: जी हाँ,
0: और भाग नहीं सकते थे ना,
1: और फिर आपको याद है वाली भी में जब वो क्या वो कास्ट ऑयल पिलाते थे नाना नानी,
0: नाना नानी
1: दबन जाकर खर्च पी लेता था अब बवाल छोड़ो जल्दी कर लो,
0: जल्दी कर लो,
1: अरे बहुत तकलीफ हुआ करता था, तो समझ लाइफ भी ऐसे हमारा है, हम सब लाइन में खड़े हुए हैं, बस इस लाइन में हम भाग नहीं सकते पीछे।
0: उन नाना का मड़ा जो था ना, बेलो फीज में बोलते हैं, वहाँ महफिल सजती थी ना
1: जी जी,
0: हम पाठशाला से आते थे, पंचायत पाठशाला से आते थे, बगैर चाय पिए कुछ खाकर घर नहीं जा सकते थे, तो देट यूज टू बी द असेंबली प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस, वहीं पर नहीं, नाना नहीं सिखाया होगा, यू वॉज वेरी स्ट्रिक्ट,
1: कुटते थे ना, वो खरीदता नहीं था,
0: कुटता था, क्या बात है ना, बहुत मुझे पूरा वाले बुक का वो दृश्य आता है ना। तो जतीश भाई यही है बस, अंत में हम उन्हें याद कर रहे हैं ना, उनकी आत्मा को, और जो भी सेवाएं उन्होंने प्रदान की हैं, आज हम मालिक से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जहां भी कभी ये आत्मा जाए वो सुखी रहे और सब कुछ से मुक्त हो, बीमारी दुख तकलीफों से, जो यहाँ का है, जो बोले ना क्या बोलते हैं उसको, अंदर यहीं छोड़ कर सब चले जाए ना।
1: किसी ने मुझे कल कहा, मैंने कहा
0: कर्म का फल ना,
1: चलो
0: पुराने
1: लेकर आते हैं, लेकिन
0: तो तो जतीश भाई आपको रेडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभा जी के प्रति जो शब्द किए हैं उसके लिए, और क्या करेंगे, जीवन है। बस एक गीत से मैं इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करूंगा, और इसके बाद आप जानते हैं कि रविंदर जी अरविंद दत्त साहब आएंगे,
1: कुछ भजन का जो अभी होने वाला है
0: जी,
1: उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे दोस्तों, तो आप जरूर सुनिएगा, डू गो एंड सपोर्ट, एक फंडरेजर है एंड अच्छा लगेगा, आप लोग जरूर जाइए, ठीक है।
0: धन्यवाद जतीश भाई, नमस्कार जी। तो चलो मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते पहले सनातन का, सनातन ये जो भजन संग्रह हो रहा है उसका विज्ञापन सुन लेते हैं, और विज्ञापन के बाद हम एक गीत और फिर 7:45 याद रहे अरविंद जी को लेकर आएंगे।
2: काल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट, सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम, और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
0: तो मित्रों एक भेंट वार्ता हम लेकर आएंगे 7:45 PM, आप सुनते रहिएगा, और चलो आगे बढ़ते हैं, एक और गीत प्रभा जी के प्रति हम बजाते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही यही रंग रूप, थोड़े गमे थोड़ी खुशियां थोड़ी छांव।

0: ये मित्रों फिल्म पिया का घर का ये गीत आप सुन रहे थे और इस समय लगभग 27 मिनट हुए हैं 7 बजकर और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आपके लिए एक दो विज्ञापन बजा देते हैं और उसके बाद एक रक्षाबंधन पर आधारित गीत को हम बजाएंगे आपके लिए। तो सर्वप्रथम ये खबर सुनिए।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: और मित्रों इस समय ठीक 7:30 बजे हैं और उनको याद कर रहे हैं जिनका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है और जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारा बधाइयां हम दे रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से। कल डॉक्टर अलका जगेसर जी का जन्मदिन था और हमारे तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद उनको पहुंचे। ईश्वर उनको सब कुछ दे जो उनको जरूरी है और अच्छा स्वास्थ्य रखे और माता पिता से जुड़े भाई बहन से परिवार के साथ मिलकर सब कुछ करें। और जो काम कर रहे हैं बहुत प्रशंसादायी काम कर रही हैं और जिनका भाई शादी का सालगिरह आपका जोड़ी सदा सलामत रहे यही ईश्वर से हम कहेंगे। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब एक रक्षाबंधन का गीत है, धागों से बांधा, उनको हम याद कर रहे हैं, माताओं को याद कर रहे हैं जिनका अब भाई के पास जाएंगी धागा लेकर या राखी लेकर। तो भाई बहुत प्यार से, भाइयों ये अनोखा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं बनता है। तो चलो सुनते हैं इस गीत को फिर हम आगे बढ़ेंगे।

0: जी मित्रों, बहुत ही प्यारा सा राखी का एक गीत था। और आपसे हमेशा कह दूं ना, ये रक्षाबंधन त्यौहार तो त्यौहार ही है, लेकिन इसका जो खास वो है, बोलते हैं ना, सिग्निफिकेंस याद दिलाता रहता है हमें कि भाई हमेशा हमें अपने पूरे परिवार का हर तरह से सेवा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा जो खास भूमिका इसमें क्या होता है। भाई बहन हैं, इसके साथ साथ एक्सटेंडेड फैमिली हैं, पूरे परिवार हैं, सब हैं इसमें, तो सबका एक ही तरह से सेवा करें। और ख़ास तौर से जो ये भाई बहन का प्यार है या प्रेम है या रिश्ता है, बहुत ही अनोखा रिश्ता, ऐसा कोई दूसरा रिश्ता भी नहीं है। और हमेशा खड़े रहें, जरूरी पर मदद करें। और सेवा के जहाँ विषय होता, हमें सेवा के हैसियत से सबका सेवा करना जरूरी है। और सेवा जब करोगे तो एक बहुत बड़ा सा आनंद अंदर अंदर पैदा होने लगेगा। तो ये था कुछ बातें हम कर रहे थे। और रक्षाबंधन याद रहे, 28 तारीख को है। और चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दो विज्ञापन लेते हैं। और याद रहे, 7:45 बजे अरविंद जी से कुछ बात करेंगे।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
0: प्रिय श्रोतागण, हमारे स्टूडियो में इस समय 22 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और थोड़ी देर में एक भेंटवार्ता लेकर आएंगे अरविंद जी के साथ। तो प्रोग्राम सुनते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ मज़ेदार गीतों के साथ। इस बार फिल्म दिल क्या करे का अति लोकप्रिय गीत है, जिसके अलका याग्निक जी अदा करेंगी।

ये मित्रों, कभी तुम नहीं थे कभी हम नहीं थे, क्या है ये? बहुत ही प्यारा सा गाना था, दिल क्या करे फिल्म का। एक और गीत बजा लेते हैं और उसके बाद कौन आएगा आप जानते हैं, अरविंद दत्त साहब आएंगे और उनसे कुछ बातें हम करेंगे। तो आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, जिसका प्रसारण 1701 AM के माध्यम से 7 in My Rocks ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से हम कर रहे हैं। मैं हूं परमानंद, यह संगीत सरगम नामक कार्यक्रम जो हर शनिवार को 6:30 से 8:30 के बीच मैं लेकर आता हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लता जी, उदित जी की क्या प्यारी जोड़ी है,

0: जय मित्रों, तुम क्या मिले जाने जा, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगा होगा। शनिवार है भाई, मौसम प्यारा है, 22 तारीख है और ऐसे प्यारे मौसम में खुश की बात है कि हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो ग्रैन भजन इवेंट होने जा रहा है लोगन सिटी में, और अरविंद दत्त जी हैं। अरविंद जी, रेडियो ब्रिजबानी पर आपका मैं परमानंद तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ, हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार परमा भाई, और सब सुनने वालों को भी नमस्कार हमारी तरफ से
0: जी। और ये जो प्रोग्राम आप रच रहे हैं, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपने कहा है कि हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं उनका यू ट्राई टू प्रमोट देम, तो थोड़ा सा इसके बारे में किसे ऐसा ख्याल आपको क्यों और कैसे आया?
1: धन्यवाद परमा जी। जिसे आप जानते हैं कि जो सुनने वाले कोई अगर हमें जानते हैं, तो हम जो हमारे बिजनेस चल रहा था 3 कार्पेट फीजी में और यहाँ पर भी, तो फीजी में जब हम थे तो जो बहुत मशहूर अनाउंसर अनिरुद्ध दिवाकर जी, जब वो मिलकर रेडियो सरगम शुरू किए, तो मुझसे संपर्क किए कि अरविंद, हमारे फीजी में कीर्तन भजन अभी बहुत प्रमोट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हम कीर्तन को प्रमोट करें। तो उस समय हम उससे जुड़े कापेट और रेडियो सरगम, जो फीजी में हम प्रमोशन शुरू किए कीर्तन के, तो कीर्तन को हम उठाकर बहुत एक अच्छे उप स्थान पर लेकर आए, तो बहुत फेमस हो गया। तो जब से मैं यहाँ आया, अपने व्यस्तता, अपने बिजनेस में, सभी कुछ में, तो अभी 1.5 साल पहले तो फीजी का बिजनेस बेचा और यहाँ का भी, तो थोड़ा मेरे पास टाइम आया, और अक्सर जो मुझे जानते हैं वो मुझे कॉन्टेक्ट करते कि भाई जी, क्यों नहीं आप भजन कर दे, क्यों नहीं आप हमारे लिए कुछ कीर्तन करें, ऑर्गेनाइज करें, तो ये मेरे माइंड में चल रहा था। तो अभी थोड़ा सा मेरे समय मिला और मैं देखता हूँ कि जब भजन या कीर्तन में इत्यादि कुछ भी होता है इवेंट, वो ओकेजनल बेसिस पे होता है, कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए होता है, तो कोई इसे सामने नहीं आता है कि चलो अच्छा हम लोकल जो टैलेंट्स है उनको प्रमोट करें विद द इंटेंशन ऑफ जो हमारे कल्चर है, हमारे भजन हो गया, कीर्तन हो गया, उसको प्रमोशन करने के लिए। तो इसी इच्छा के सोच के हमने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट ताल इवेंट्स रजिस्टर किया, तो वो हमारे फैमिली का खुद का इवेंट कंपनी है, और हम क्या करेंगे, यही इंटेंशन है कि आगे चल के जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है ब्रिस्बेन में, चाहे वो भजन गायक हो, चाहे कीर्तन गायक हो, और भी कोई म्यूजिकल इवेंट है, हमें संपर्क करते, तो हम कोशिश करेंगे छोटा सा स्पॉन्सर आदि ढूंढ के, बिकॉज कॉस्ट लगता है उसमें, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज करे तो क्या होता है, उनका एनकरेजमेंट मिलता है, जो हमारे संस्था है, जो हमारे कल्चर है, और रुचि उसमें बढ़ते रहता है। इसी इंटेंशन से हमें कर रहे हैं।
0: नहीं, बहुत उत्तम आपका विचार है, क्योंकि मुझे मैं जानता हूँ बहुत सालों से आपको, और जब अरविंद दत्त का नाम आता है तो कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रचते हैं, चाहे घर पे कोई प्रवचन हो, चाहे रामायण का पाठ हो, चाहे कहीं भी, और आप हाथ बटाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये जो आप बोझ उठाए हैं, ये बड़ा उत्तम बोझ है, और हमारे समाज में ऐसे ऐसे बेचारे कलाकार बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छे गाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, उनको अवसर नहीं मिलता है कि पब्लिकली वो जाकर अपना जो टैलेंट है उसे प्रदर्शित करें। तो ये आप जो कर रहे हैं ना, इससे जरूर प्रोत्साहन उनका भी बढ़ेगा, हमारे समाज के जो लोग आए देखेंगे, बोलेंगे भाई हमारे घर खुद हैं, हमें बाहर से मंगाना जरूरी नहीं है किसी को। अरविंद भाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद होगा परमा भाई, करीबन आई थिंक 8-10 साल पहले, उस समय मैं सनातन धर्म में वाइस प्रेसिडेंट भी था, तो उस समय मैंने ऑर्गेनाइज किया था सनातन धर्म के लिए, वो पहला भजन कंपटीशन हुआ था, कंपटीशन नहीं जो हम कह सकते, भजन इवेंट हुआ था यहाँ पर ब्रिस्बेन में, वो था हमारे जो माइकल चंद महावीर
0: जी, जी।
1: जो आजकल वो बहुत ठीक नहीं है, उसका हेल्थ ना, उसको स्ट्रोक मारता तो घर पे बेचारा थोड़ा बीमार रहता है, और बहुत मशहूर गायक जो है बलराम बाके ना, उसके बीच में हमने किया था यहाँ ग्रीन बैंक कम्युनिटी हॉल में, तो वो भी हमने मिलके ऑर्गेनाइज किया था सनातन धर्म के लिए। तो उसके बाद में जो अभी जो हमने ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो बलराम जो है उसके जो बेटे हैं विनेश राम, उसको लेकर, और जो हमारे अपना यहाँ क्वींसलैंड का उभरता कलाकार है जो इतेश सामी, ये दोनों बहुत ही धार्मिक, बहुत ही लाइक डिसिप्लिन हम कह सकते हैं कि बच्चे हैं, अभिनय से, वो जो सिडनी में रहता है, वो अपने भजन इत्यादि कीर्तन और जितने भी कम्युनिटी है उसमें जाकर वो हाथ बिताता है। और ऐसे ही हितेश स्वामी को आप देखोगे कहीं पर भी, मरनी हो गया या रामायण हो गया, कुछ भी हो गया, वो सभी जगह रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दो कलाकार को लेकर हम आगे चलते हैं, और अभी जल्द में तो काफी कीर्तन वगैरह हुआ था, या तो मेरा तो दिल से कीर्तन में भी बहुत रुचि है, तो मेरा तो शायद पहला इवेंट कीर्तन रहता है, तो बट अभी हो रहा है और भी कीर्तन, तो मैंने चला चलो अच्छा भजन लेकर चलते हैं, आगे चल के हम कीर्तन भी करेंगे, और भी जो जी आएगा प्रोग्राम में या पीपल रिक्वेस्ट करेंगे हम लेकर आएंगे। तो वो जो हमने भजन किया था, मैं कहना चाहता था, उसमें हमने ब्रेक किया था, ब्रेक या लॉन्च किया था स्पेशल आर्टिस्ट, आपको याद होगा,
0: जी
1: जो ये सनातन भाव रामायण मंडली जो, उसमें जो ढोलक वादक है नील करके, जो लड़का ढोलक बजाता है, बहुत ही मशहूर ढोलक बजाता है,
0: जी जी
1: तो हमने उसको एक गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे लॉन्च किया था, और वो बलराम के ढोलक बजाता था, छोटा बच्चा था उस समय, उसके हाइट ढोलक तक नहीं पहुंचता रहा, तो
0: जी
1: वो बड़ा यूनिक था उसके लिए, तो हमने
0: अच्छा
1: सोचा कि ये भजन में क्या करें, तो मैं जो ये हितेश स्वामी है उसके जो छोटी बहन है चांदनी स्वामी, वो
0: जी
1: लोकगीत वगैरह गाती है सभी जगह, बट मैंने जो हमारे जो कम्युनिटी लीडर थे, जो फोमा पेट्रन सनातन धर्म के जो रोबर्ट कंदा स्वामी है,
0: जी
1: उसके घर पे अक्सर जाया करते थे, तो हमने वहां पर सुना था ये जो बच्ची है वो भजन गाए थे उस दिन, तो मैंने फिर हितेश स्वामी से संपर्क किया कि अपने बहन से पूछो कि मैं उसको इसमें लॉन्च करना चाहता हूँ एज अ भजन गेस्ट आर्टिस्ट, वो जो भजन में सुवर्णी होता है ना, तो
0: जी
1: मैंने कहा वो बच्ची बेचारी बड़ी खुशी होगी कि अंकल आपने इतना सोचा, वही बहुत है, एंड देन शी इज वेरी एक्साइटेड, तो ये भजन में एक मेन इवेंट रहेगा जो हमारे तो पहला सुवर्णी होता है, तो ये एक फीमेल आर्टिस्ट है, बच्ची है, वो गाएगी भजन, तो काफी अट्रैक्शन रहेगा, तो पीपल आई थिंक दे विल लाइक दैट आइडिया एज वेल।
0: वो जो आप बोल रहे हैं 8 साल की जब ये हुआ था वो ग्रैंड भजन, वो भजन में मैं था, और महावीर साहब और बलराम भाई, बरसाने का भैयो मोहन नंद लाल, बरसाने का भैयो, वो मुझे याद है, वो मेरा बड़ा ही फेवरेट गाना है फाक का, और हमेशा वो बासो का टीम का जो फुटबॉल है वो भी उसमें दिखाई देता है, क्या बात
1: जी
0: है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा आगे बढ़ते
1: हाँ
0: हैं, ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है एक कब और कहाँ होगा और कितने बजे से होगा, थोड़ी जानकारी दे दें लोगों को।
1: ओके, ये अगले जो फ्राइडे को 28 अगस्त 6:30 बजे हम अपना गेट वगैरह खोलेंगे, और ओपन हो जाएगा, तो 7 बजे से शुरू होगा, लोगन वेस्ट कम्युनिटी सेंटर जो है, पीपल काफी उसको जानते हैं वाइन ग्लास हॉल के नाम से, जो हिलक्रेस्ट में है, तो
0: जी
1: अक्सर वहां पर बर्थडे पार्टीज वगैरह इवेंट्स होते हैं, तो अच्छा हॉल है, उसमें साउंड सिस्टम वगैरह है, और आप जानते हैं जो हमारे भजन वगैरह होता है, तो जो हमारे पीपल आते हैं तो कावा वगैरह या स्नैक्स वगैरह लेते हैं, तो ये हॉल के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इसीलिए हमने ये चूज किया है, काफी सेंट्रल भी है पीपल के लिए, और तो ये 6:30 बजे से जो लोगन कम्युनिटी सेंटर है, लोगन वेस्ट कम्युनिटी सेंटर वाइन ग्लास के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर होगा अगले शुक्रवार को,
0: 28 तारीख
1: और
0: को
1: हाँ 28 तारीख को,
0: जी।
1: तो वहां पर रहेगा ये।
0: और ये जो प्रोग्राम हो रहा है लोगों को टिकट खरीद कर आना पड़ेगा,
1: जी
0: तो
1: हाँ,
0: आप टिकट का मूल्य बतला दें और किसको वो संपर्क करें।
1: वो मुझे संपर्क कर सकते हैं 0452584926, फिर से मैं बोल रहा हूँ 0452584926, और टिकट का प्राइस है $20 है, उसमें खाना इंक्लूडेड रहेगा, तो पीपल अगर आते हैं उनको वरी नहीं करना है कि घर पे जाकर खाना बनाना है, ये
0: जी
1: तो हम देखते हैं अक्सर कोई कोई फैमिली हमारे काफी रुचि रखते हैं भजन में, कीर्तन में, या तो कम्युनिटी प्रोग्राम में, और या एलटी कपल भी है, तो वो दोनों साथ में आते, तो उनको वरी नहीं करना कि घर पे जाकर खाना बनाना, तो ये $20 में हमने खाना भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है,
0: जी जी
1: और नमना इत्यादि सब ड्रिंक्स वगैरह वो फॉर सेल रहेगा वहां पर पीपल के कन्वीनियंस के लिए।
0: अच्छा और एक बात और पूछना है, क्योंकि भजन संग्रह है यहाँ पर, शराब पीकर लोग कैसे नहीं आ सकते ना।
1: ना बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये भजन है, और आप एक बहुत अच्छा सवाल उठाया, बिकॉज इसमें हमने रखा भी है दोनों कलाकार से बात करके, बिकॉज एक बात और है भाई जी परमा, आप जानते हैं कि कभी कभी भजन वगैरह होता है तो बहुत इसे नहीं गहराई में हो जाता है, तो जो
0: जी
1: हमारे आज युवा लड़कन है, और हम भी कभी कभी नहीं समझ पाते, तो मैंने दोनों से बात करके मैंने दो विषय को चूज किया था कि इसमें से आप दोनों कर लो जो चाहिए, एक है राम विस्तार और एक था हनुमान विस्तार। तो ये दोनों विस्तार पे आदमी सभी समझते अच्छे से। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ, जो भजन हो गया, कीर्तन हो गया, ये हमारा धर्म प्रचार है संगीत के तौर पे। तो मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा पीपल से कि वो नगुना इत्यादि रहेगा, वो जूस पान गरम गरम चाय सब कुछ रहेगा, तो आप शराब पीकर मत आए, और एनवायरमेंट है उसको आप इज्जत देना।
0: जी, और अंत में कुछ और कहना चाहते हैं अरविंद भाई?
1: ना बस धन्यवाद आपके लिए और रेडियो ब्रिजबानी के लिए और जितेंद्र जितेंद्र भाई के लिए कि आप अक्सर आते हैं, हमारे जितने भी कम्युनिटी इवेंट है सबको सपोर्ट करते हैं, और हम आगे भी चल के करेंगे। और जैसे आप जानते हैं, स्पॉन्सर्स को मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो हमारे ये मेन इवेंट स्पॉन्सर है वो एलिवेट फोकलिफ्ट करके है, बेटा निशाल है, वो अक्सर आता है, तो उसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको भी, रेडियो बिजवानी को भी, जो हमारे रेडियो के माध्यम से पीपल को ये मैसेज दे रहे हैं, और हमारे जो दो कलाकार के स्पॉन्सर है, होम प्रॉपर्टी ग्रुप है मोहम्मद शहीद, और एक लड़का है जो हमारे फिजी का MST मैकेनिकल, वो बावडेजर रोड में चला रहा है, वो ने स्पॉन्सर किया, और दो तीन छोटे स्पॉन्सर है, रिया ज्वेलर्स है हमारे पास, और मोगत चोई जो मुख्तार बादशाह बैंक चला रहा था, वो अपना ब्रोकरेज बिजनेस कर रहा है। तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिए और आइए, ये भजन का मजा लीजिए, हम फन करेंगे, विल हैव अ गुड एंटरटेनमेंट इवनिंग, और हम कोशिश करेंगे 10:30-11 बजे तक ये फिनिश करें, तो पीपल अपने घर पे धाम को टाइम पे जा सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई, और प्रोग्राम में आने के लिए, विस्तार से खबर पहुंचाने के लिए, जो आप एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के हैसियत से ग्रैंड भजन इवेंट के बारे में लोगों को जानकारी दी है, तो धन्यवाद जी। और आपका जो विज्ञापन है इसके बाद मैं बजाऊंगा, मिलते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परमा जी,
0: थैंक यू जी, नमस्कार जी,
1: नमस्कार।
2: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट, सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम, और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिल क्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
0: और मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी, आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं, और अभी से लेकर ठीक 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया हम आपके सेवा में पेश करेंगे। आपको रानी कृष्ण की तरफ से हार्दिक स्वागत है, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, राम राम।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जी मित्रों, और आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्योहार है, और 28 तारीख को रक्षाबंधन है। अगर आपने भी धागे और रक्षाबंधन नहीं खरीदे हैं या कार्ड्स वगैरह नहीं लिए हैं अपने भाई के लिए, तो रानी क्रिएशन शॉप में मिलेंगे आपको, और आप आ जाइए, और बहुत ही उचित दामों पर ये बिक रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ आपको उपहार देना है परिवार में किसी को रक्षाबंधन के अवसर पर, तो यहाँ पर आपको घटाए हुए दामों पर अप टू 50% ऑफ सेल चल रहा है, जहाँ पर आपको हर प्रकार के कपड़े मिलेंगे और एक्सेसरीज मिलेंगे, और सजने सजाने के लिए ज्वेलरी भी मिलेगी। और शॉप खुलती है 10 बजे सुबह और शाम को 4 बजे बंद होती है, मंडे टू सैटरडे। संडे को 10 AM टू 3 PM का आवाज है, बदले हुआ आवाज है। तो आप रानी क्रिएशन शॉप में अगर कभी आए नहीं हैं और सोच रहे हैं प्रोग्राम ये जो सुन रहे हैं कि भाई हमने तो कभी गया नहीं इनके दुकान में, तो कॉल कर लें 04-13-951-546 पर या 07-33-91-0622 पर, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। पूजा पाठ भी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको फैब्रिक वगैरह नौ ग्रह का पूजा वगैरह लोग करते हैं, ढूंढते रहते हैं भाई अलग अलग रंग के हमें कपड़े कहाँ मिलेंगे, पंडित जी ने ये कहा है, वो सब मिलते हैं यहाँ पर।

0: जय मित्रों, आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और इस समय हम बतला रहे हैं आपको कि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है और रानी क्रिएशंस शॉप में राखी धागे वगैरह उपलब्ध हैं, जो आप आकर खरीद सकते हैं बहुत ही उचित दामों पर। हम आगे बढ़ेंगे, विज्ञापन सुनाते हैं आपको रानी क्रिएशंस का, फिर एक और मजेदार गीत।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. telephone Rani Creations on 3

0: 9391-7391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: Ji mitro aur pata yaad hai 33 Balaclava Street Ulungeba aur hours hain 10 am to 4 pm aaj, kal rahenge 10 am to 3 pm. यहाँ पर इसके अलावा कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह में कुछ किसी को देना चाहते हैं तो सारी इसका बहुत बड़ा रेंज है और मर्दों के कपड़े, औरतों के कपड़े, बच्चों के कपड़े सब उपलब्ध हैं. एक्सेसरीज में स्टॉल्स वगैरह शादी वगैरह कर रहे हैं तो उसका भी जोड़ा मिल सकता है और सजने सजाने के लिए ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर मिलती है. और कुछ DVDs हैं जो घटाए हुए दामों पर इस समय क्लियर हो रहे हैं, उनमें इंग्लिश सबटाइटल हैं और ओरिजिनल DVDs आपको मिलेंगे रानी क्रिएशन शॉप में. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अगला जो गीत है तुम लौंग मैं इलायची, क्या बात है, तुलसी कुमार जी से अदा करेंगी.

0: जी मित्रों, आप सुन रहे थे बहुत ही लोकप्रिय गीत तुम लवांग मैं इलायची, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप रानी कृष्ण का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया ही सुन रहे हैं। और वही रानी कृष्ण जो सप्ताह के सातों दिन खुलते हैं, हर प्रकार के कपड़े वगैरह यहाँ आपको मिलेंगे। बस आइए और पूरे परिवार के साथ घरेलू वातावरण में शॉपिंग कीजिए। आगे बढ़ते हुए एक नया गीत है, लेकिन ज़्यादा लंबा है। मैं सोच रहा था कि छोटा सा वेजन, अच्छा कोई बात नहीं, बजाते हैं, कोई बात नहीं, इसको बजा देते हैं। और गीत के बोल भी कमाल के हैं दोस्तों, चलो सुनते हैं। आएगा मज़ा अब बरसात का।
1: Dreamy underwater world in just one second. Meet the Kamauo Immersive Ocean Projector, the mood light that's taking the market by storm. Over 100,000 sold.
2: Shimaru ke naye videos ke liye subscribe kijiye.
0: Jiyan bigapan bajaye, fir hum aapko sunwate hain wo geet.

0: साथियों से।
1: जी मित्रों, इस गीत को यहीं पे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि 8:15 बज चुके हैं और रानी क्रिएशंस का 15 मिनट का सेगमेंट था जो समाप्ति पर पहुंच रहा है। और आपको याद दिला दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और रानी क्रिएशंस में आपको रक्षाबंधन धागे और कार्ड्स वगैरह मिलेंगे जो आप अपने परिवार को किसी भी सदस्य को दे सकते हैं। तो अगले शनिवार को एक बार फिर एक और सेगमेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी शॉपिंग एट रानी क्रिएशंस। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू, हैप्पी रक्षाबंधन।
0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: मित्रों, इस समय 17 मिनट हुए हैं 8:00 और आपको याद दिला दें कि मेरे प्रोग्राम के बाद निविया जी आ जाएंगी टॉप 10 लेकर और फिर उसके बाद ऑटोमेशन पे प्रोग्राम चलता रहेगा। और कल रविवार है, आप जानते हैं कि धार्मिक प्रोग्राम से प्रोग्राम शुरू होता है। और 8:00 आ जाएंगे नन किशोर दास प्रभु जी वेदवाणी को लेकर, जतीश पूरन जी आएंगे 9:00 और फिर रॉय सिंह साहब आएंगे 12:30 से, सुशीला जी 2:30 से। तो ये कुछ लाइनअप है प्रोग्राम का। प्रोग्राम सुनते रहिएगा, आनंद लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलें एक खबर के साथ।

0: जय मित्रों, तनाई तनाई तनाई आप सुन रहे थे और इसी के साथ ही चल रहे हैं। 22 मिनट हुए भाई, 8 बजकर, समय कैसे भाग रहा है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो गाने हम बजाएं आपको अच्छा लगा होगा। चलें खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। और प्रदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉल के लिए, एक खबर सुनाते हैं।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: आप रेडियो ब्रिस्बेन, आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और एक ही गीत का और समय है। हमको दीवाना कर गए, ये बजाते हैं और उसके बाद निबिया जी आ जाएंगी थोड़ी देर में प्रोग्राम को लेकर, साथ दीजिएगा। और इस गीत को अदा करें सोनू निगम और तुलसी कुमार जी। प्रदीप भाई, आपको भी शामिल करता हूँ गाने में।

जी मित्रों, इस गीत को यहीं पर छोड़ना पड़ रहा है समय अभाव के कारण, और अगले शनिवार को कुछ और लेकर आएंगे आपके सेवा में। तब तक के लिए बस आज का सफर यहीं तक का था, फिर हम मिलते हैं। यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और याद रहे निविया जी आ जाएंगी थोड़ी देर में। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरशे टीविया के साथ। एंड कैसे हो आप? जी हाँ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा फील कर रहे हो? सबसे पहले आप सबको हैप्पी वीकेंड। जी हाँ, वीकेंड आ गया है, मस्ती धूम धड़ाका सब कुछ आ गया है और मेरा तो बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले करने का मन भी कर रहा है। अब बल्ले बल्ले बल्ले करने का मन क्यों कर रहा है? क्योंकि जब मस्ती आती है तो बल्ले बल्ले बल्ले अपने आप ही निकल जाता है भाई, हम क्या करें, निकल जाता है खुद ही। जी हाँ, सो वीकेंड आ गया है एंड आई होप आपने वीकेंड की प्लानिंग मजेदार से की हो और आपने अच्छे से अपने वीकेंड को प्लान किया हो। और ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं, अगर आपने प्लान नहीं भी किया है तो आप घर पे बैठ के चिल भी कर सकते हो। यू नो व्हाट, हम लोग प्लानिंग से इतना ज्यादा जो है वो वाकिफ रहे हैं कि हमको लगता है कि प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, प्लानिंग होनी चाहिए और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्लान अहेड, पहले प्लानिंग कीजिए ताकि आप वीकेंड पे सारी अच्छी अच्छी चीजें कर पाओ। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको सिर्फ घर पे काउच पे पड़े रह के नेटफ्लिक्स देखना है और पॉपकॉर्न खाने हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ऑल्सो एक्टिविटी जो कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है और मुझे लगता है कि हमें अपनी बॉडी को पहचानना चाहिए। तो हमारी बॉडी जो जैसी रिलैक्समेंट जिस वक्त मांग रही होती है हमें उसे देनी चाहिए। सो अगर हमारी बॉडी कह रही है कि घर पे ही चिल कर लो तो घर पे चिल कर लो, नेटफ्लिक्स देख लो क्योंकि वहां भी बहुत कुछ है। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एंड प्लानिंग आपने जहां की भी की है, घर पे बैठने की या बाहर पे बैठने की, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। घर पे आप क्या करने वाले हो और बाहर क्या कर सकते हो, सब। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। जी हाँ, प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमारे पास 10 चुनिंदा गाने होने चाहिए जो कि ऑलरेडी हमने आपके लिए रख लिए हैं और वही 10 चुनिंदा गाने, ट्रेंडिंग गाने हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं बिकॉज इट इज टॉप 10 हॉट 10। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज सबसे पहला गाना है 10वें नंबर का, साड़ी। जी हाँ, और ये गाना पहले ही काफी हिट हो चुका है, अब तो इसे धमाल 4 में लिया गया है और वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सुनते हैं इस गाने को और फिर करते हैं बहुत सारी बातें।

0: अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जब ये गाना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हिट हुआ, क्योंकि इसे जिसने गाया है वो ओवरनाइट स्टार बन गए थे. जी हाँ, जिस सिंगर ने इसे गाया हुआ है वो ओवरनाइट स्टार बन गए थे. और मैं आपको बता दूं कि संजू राठौड़ का ये गाना जो है वो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था, एंड दैट इज द रीजन कि धमाल 4 में भी इसे लिया गया है. और ये गाना जो है सिर्फ धमाल 4 का गाना नहीं है, जैसे मैंने कहा कि पहले ही ये गाना आ गया है, संजू राठौड़ का सिंगल है ये, और उसके बाद जो है ये इतना ज्यादा हिट हो गया था कि धमाल 4 में इसे लिया गया. अच्छा, जैसे मैं बात कर रही थी कि दिलचस्प बात ये है कि ये गाना जब आया तो गुलाबी साड़ियां ने लाली लाल लाल, मतलब गुलाबी साड़ी की यहाँ पे बात हो रही है, और लड़कियां इस गाने पर इतनी रील बनाई है कि मैं आपको क्या बताऊं. जी हाँ, मतलब इंटरनेट अगर आप खोलते थे तो आपको सिर्फ इसी गाने पर रील दिखती थी, लड़कियां और सच में गुलाबी साड़ी पहने हुए वो इस पे डांस कर रही है, थिरक रही है, और एकदम अदाएं जो है उनका जादू चला रही है. लेकिन गुलाबी साड़ी जितनी ज्यादा हिट इस गाने के बाद हुई थी, मुझे नहीं लगता कि इतना गुलाबी आंखें हिट हुई थी. जब गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, जी हाँ, आई नो गुलाबी आंखें डज नॉट मेक सेंस, बट द थिंग इज गुलाबी साड़ी डज मेक सेंस, एंड या दैट इज द रीजन कि ये गाना इतना ज्यादा हिट हो गया है. और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, और धमाल 4 अगर आपने नहीं देखी है जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसी का गाना है ये. इश्क कमीना 2.0, एक और 2.0 वर्जन आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि है बेबी डू डाई डू का गाना, और हुमा कुरैशी का ये गाना है, और हुमा कुरैशी इसमें बड़े ही थ्रिलिंग अंदाज में आपको दिखने
1: दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि थ्रिलर्स के आप हो शौकीन तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि थिएटर से अब ये मूवी उतर गई है, लेकिन ओटीटी पे जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और थ्रिलर्स जो है वो ट्रेंड में बनी हुई है। मैंने कहा ना, जैसे बॉलीवुड में एक मूवी हिट हो जाती है, सारी की सारी मूवीज वैसे बननी शुरू हो जाती है। अब मैं तो यार कर रही हूं, मतलब लिटरली मैं तो ये देख रही हूं, इस बात का इंतजार कर रही हूं कि कब धुरंधर जैसी मूवीज बनाने की लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वैसी कोशिश धुरंधर वाली लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब रह सकती है। क्योंकि धुरंधर जितनी हिट हुई थी, धुरंधर जितनी पसंद आई थी लोगों को, उसके हिसाब से तो मतलब लोगों को वैसी मूवीज बनानी चाहिए, बट आदित्य धार के अलावा वैसा मूवी मेकिंग स्किल है नहीं किसी के पास। सो लेट्स सी आदित्य धार कब आते हैं अपनी अगली मूवी के साथ, बिकॉज वी रियली आर वेटिंग फॉर इट। जी हाँ, तो ये है बेबी डू डाई डू, और इसको देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। मदहोश है अगले गाने का नाम, मदहोश, और ये गाना है तारा सुतारिया और यश की मूवी का, विच इज टॉक्सिक। बट एग्जैक्टली मूवी इज टॉक्सिक और नॉट, दैट यू हैव टू सी योरसेल्फ। जी हाँ, सुनते हैं इस गाने का और फिर करते हैं और बहुत

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और टॉप 10 हॉट 10 चल रहा है, वीकेंड चल रहा है भाई, बहुत ही मजेदार जो है उस भावना के साथ, उस थीम के साथ हम ये प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि हाँ, भावना और थीम दोनों ही बहुत ही अच्छी है, बिकॉज इट्स वीकेंड और वीकेंड पे सब कुछ अच्छा लगता है। लेट्स बी रियल, दैट इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना हम आपको सुनाने के लिए तैयार है, जो कि है 7वें नंबर का गाना और इस गाने का नाम है ऊंचा लंबा कद। बट इट्स नॉट जस्ट अ ऊंचा लंबा कद, इट्स अ ऊंचा लंबा कद फॉर एवर, विच इज अ न्यू वर्जन ऑफ द ओल्ड सॉन्ग ऊंचा लंबा कद। अब ये गाना जो है वो वेलकम टू द जंगल से है और वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार और दिशा पाटनी और बहुत सारे और एक्टर्स की मूवी है। लिटरली अगर मैं नाम लेना भी चाहूं तो भी नहीं ले पाऊंगी, इतनी बड़ी लिस्ट है। मतलब वेलकम टू द जंगल में आपको सारे के सारे बॉलीवुड के एक्टर्स मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, जो कि आपको नहीं दिखे होंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो या मूवी आप देख सकते हैं कहां, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट। पर पहले आप सुनिए ये गाना जो कि है ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। ऑफ कोर्स जब भी हम ये गाना सुनते हैं, ये वाला भी, तो हमें कैटरीना कैफ की अदाएं याद आती हैं और वो हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे।

0: miss you, Katrina. Bring the
1: bass back. We too miss you, Katrina. जी हाँ, that's what we wanna say. क्योंकि Katrina की अदाएं, वो dance moves, वो literal choreography, क्या मतलब class class चीज़ है. जी हाँ, I think back in 2007 या 8 में ये movie आई थी and it was a tremendous tremendous hit. जी हाँ, तो इसी के साथ welcome back जो है, welcome to the jungle जो है वो तीसरा part है welcome का, और ये जो है अब OTT पर आ गई है. जी हाँ, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, बट आप थोड़ी सेंटी जोन में जाने वाले हो. अब अगर आप लोग सेंटी जोन में जाओगे बिना, देन देयर इज नो वे आपको ये गाना पसंद नहीं होगा. क्योंकि जब ये गाना आया था पहली बार, इसने बवाल मचा दिया था, धूम मचा दी थी. क्यों? क्योंकि ये है आवारापन का गाना, और आवारापन के साथ साथ, जी हाँ, आवारापन के साथ साथ ये आवारापन 2 का भी गाना है. आवारापन आई थी बहुत साल पहले, और आज एक डेकेड लेटर भी, मतलब एक डेकेड से ज्यादा जो है वो का टाइम हो गया है आवारापन को आए हुए, आवारापन 2 आ गई है. लेकिन ए दो गाने उन्होंने इस मूवी में वैसे ही रखे हैं जैसे उन्होंने पहली मूवी में रखे थे. And guess what? वो दोनों ही गाने इस लिस्ट में हैं, और वो दोनों ही गाने फिर से बवाल मचा रहे हैं. मतलब सेंटी टोन के गाने हैं, लेकिन गानों की कॉम्पोजिशन, उसके लिरिक्स, क्या कहें, लोग दीवाने हैं. यूथ मतलब दीवाना है. पहले मिलेनियल्स को पागल किया था, अब जेंजीज भी इस गाने को सुनकर पागल हैं. ये है तेरा मेरा रिश्ता फ्रॉम द न्यू मूवी आवारापन 2 आप सबके लिए.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और इसी के साथ अब चलते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या देख सकते हो आप इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। मतलब अगर आप मूवीज का प्लान कर रहे हो, मूवी जाना चाहते हो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, तो कौन सी मूवीज आप देख सकते हो थिएटर्स में, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, तो ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, सबसे पहले बॉलीवुड यानी कि हिंदी मूवीज यानी कि इंडियन मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो दो नई मूवीज पिछले हफ्ते लगी थी वही इस बार हैं, क्योंकि कोई और नई मूवी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अगले हफ्ते आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी जो है वो देखने को मिलेगी। यू नो व्हाट आई मीन, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक। लेकिन इस हफ्ते के लिए आपको मिलेगी आवारापन 2 देखने को। जी हाँ, जो गाना अभी आपने सुना ना, वो एकदम तेरा मेरा रिश्ता पुराना, मैं गा नहीं रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये वाली जो मूवी है आपको मिलेगी थिएटर्स में, अगर आपने आवारापन देखी है तो आवारापन 2 आपको अच्छी लग सकती है। जी हाँ, इट्स एक्शन क्राइम रोमांटिक मूवी, और इसमें इमरान हाशमी है, इसमें दिशा पाटनी है, इसमें शबाना आजमी भी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, इसे उन्होंने ही बनाया, मुकेश भट्ट ने, और साथ में नितिन कक्कड़ ने, जो कि पहले भी इसे बना चुके हैं। सो ये मूवी आपके नजदीकी सिनेमाघरों में लगी हुई है। पुरानी आवारापन के गाने हैं इसमें, सो ऑफकोर्स म्यूजिक जो है वो अच्छा ही है, लेकिन स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी वो आपको देखना होगा जाके, इफ दैट इज योर की। जी हाँ, इसी के साथ अगला जो मूवी है जो कि अगेन पिछले हफ्ते ही रिलीज हो गई थी, 15 अगस्त के मौके पर इसे रिलीज किया गया था। इस मूवी का नाम है बंटवारा 1947 जो है वो सनी देओल और प्रीति जिंटा की मूवी है, और शबाना आजमी इसमें भी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, इसमें सनी देओल के बेटे भी आपको इसमें नजर आने वाले हैं, और साथ में ये एक्शन ड्रामा पीरियड मूवी है, मतलब ये

गदर किसने नहीं देखी है, राइट? सो इट्स हिज अरीना एंड ही डज इट ग्रेट इन हिज अरीना. सो ये वाली मूवी आप देख सकते हैं अगेन. और इसके अलावा और कौन सी मूवी देख सकते हैं? वेल, अगर आप अपनी फैमिली के साथ देखने जाना चाहते हैं किसी हिंदी मूवी को, तो वो है धमाल 4. आई थिंक वो अभी भी कुछ थिएटर्स में लगी हुई है. वेल, आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले वो थिएटर से उतर जाए, टेक योर फैमिलीज एंड गो आउट, गो वॉच दिस मूवी, यू आर गना लव इट. धमाल जो है, धमाल 4 जो है, वो धमाल सीरीज की मूवी है एंड यू कांट गो रॉन्ग विद धमाल सीरीज. जी हाँ, सो हंसी आएगी, एडवेंचर होगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा. सो यू कैन ऑल्सो टेक योर किड्स देयर एंड वॉच इट. जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि है बंधु 2.0.

जी दोस्तों, और इसी के साथ आपने तुम ही हो बंधु, तुम ही हो बंधु ये सुन लिया है। अब इस गाने के बारे में मैं क्या कहूँ, ये भी 2.0 वर्जन है, क्योंकि सारे पहले वर्जन जो है वो लोग पहले ही ले गए हैं और अब अच्छे गाने इनको मिल नहीं रहे हैं बनाने को, तो पुराने गानों के साथ छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश हो रही है। ये वाली छेड़ाछाड़ी मुझे इतनी पसंद नहीं है। आई लाइक द ओरिजिनल सॉन्ग, सो या आई डोंट लाइक दिस 2.0 वर्जन दैट मच, बट ये स्टिल अच्छा गाना है, क्योंकि गाना पहले वाला ही अच्छा था। तो

ऑफकोर्स कुछ अच्छा तो इसमें भी होगा. एंड दैट इज द रीजन ये अभी भी ट्रेंड कर रहा है. और ये है कॉकटेल 2 का गाना. कॉकटेल 2 आप कहां देख सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम ये आपको बता दें कि ये जो आप थिएटर्स में जाके मूवीज देख सकते हो कौन सी. वेल, मैंने इंडियन मूवीज के बारे में आपको बता दिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉलीवुड मूवीज, क्योंकि बहुत कुछ है आपको देखने के लिए. सबसे पहले द ओडिसी या क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ग्रीक माइथोलॉजी के एक बहुत ही बड़े चैप्टर पर बनी है. और ओडिसियस की जर्नी आफ्टर ट्रोजन वॉर, मतलब ट्रोजन वॉर के लिए 10 साल लग गए और वहां से आने में भी 10 साल लग गए. 20 साल के लिए इंसान गायब था, उसकी वाइफ, उसका बेटा जो है वो उसका इंतजार कर रहा था. एंड दैट इज द मूवी इज अबाउट. जी हाँ, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे, एक्टर्स आपको इसमें नजर आएंगे. लाइक आपको मेट डेमन इसमें नजर आएंगे, आपको इसमें नजर आएंगी एन हाथवे, टॉम हॉलैंड, या योर ओन स्पाइडरमैन इज आल्सो इन दिस मूवी, एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. जी हाँ, सो टॉम हॉलैंड इसमें आपको नजर आएंगे. टॉम हॉलैंड की रियल लाइफ वाइफ जेंडेया और उनकी ऑन स्क्रीन एमजे भी आपको इसमें नजर आएंगी. साथ में रॉबर्ट पैटिंसन, चार्लीज थ्रोन और पता नहीं कौन कौन आपको इसमें रखेगा. जी हाँ, इनफैक्ट लुपिटा नियांग भी इस मूवी में है. सो जैसे वेलकम इनटू द जंगल वाली बात हो रही थी कि सारे सारे सारे बड़े स्टार्स आपको इसमें नजर आने वाले, यहां पे हॉलीवुड मूवी जो है ये वाली है द ओडिसी, जिसमें आपको सारे बड़े बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं. जी हाँ, बट ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, ऑफकोर्स छोटे से छोटा कैरेक्टर प्ले करने के लिए भी बड़े बड़े स्टार्स रेडी हो गए, बिकॉज इट्स क्रिस्टोफर नोलन वी आर टॉकिंग अबाउट. सो द ओडिसी जो है वो 1400 मिलियन डॉलर के करीब जो है वो कमा चुकी है एंड इट्स स्टिल गोइंग गुड. सो लेट्स सी आगे कितना जाती है, बट ये 1 बिलियन डॉलर के ऊपर चली गई है एंड इट्स अ बिग बिग फीट. इसी के साथ स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे आप देख सकते हो. ये मूवी के बारे में मैं क्या कहूं. जी हाँ, मतलब ये मूवी लिटरली 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमा चुकी है और ऐसे चलता रहा तो ये 3 भी कमा लेगी और हम सब यहां देखते रहेंगे. मैं मूवी देख चुकी हूं, मैं इसका रिव्यू भी कर चुकी हूं. अगर आप अपने बच्चों को लेकर जाना चाहते हो, यू कैन लिटरली टेक योर किड्स एंड वॉच द सुपर हीरो, यू नो द ड्रीम सुपर हीरो स्पाइडरमैन. और बच्चों को ये मूवी और भी ज्यादा पसंद आएगी, सो गो फॉर इट. एंड टॉम हॉलैंड आई थिंक इज माय फेवरेट स्पाइडरमैन. जी हाँ, अभी तक 3 स्पाइडरमैन हुए हैं, लेकिन जो मेरे फेवरेट स्पाइडरमैन है वो टॉम हॉलैंड है. व्हाट अबाउट यू, जरूर मुझे बताइएगा. इसी के साथ जो एक और मूवी रिलीज हुई है इसी हफ्ते वो है इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर. जी हाँ, एंड इट्स अ हॉरर मूवी, फैंटेसी मूवी. इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. आप इसे देख सकते हो नजदीकी सिनेमाघरों में. लेकिन अगर आपको डर लगना बुरा नहीं लगता, मतलब आपको डर लगने में किक मिलती है, तो ही जाइएगा, क्योंकि ये काफी डरावनी हो सकती है. जी हाँ, इंसीडियस जो है इज नॉट अ नॉर्मल मूवी. ये पहले भी आ चुकी है, इट्स अ सीरीज और इसकी काफी मूवीज आ चुकी है, एंड ये वाला भी एक नया और खतरनाक चैप्टर है. और इसका आगे का नाम है आउट ऑफ द फर्दर. ओ माई गॉड, आउट ऑफ द फर्दर, I don't know where we are going, but the thing is कि this movie is scary and if you like scary things then only go for it, otherwise don't go for it. जी हाँ, इसके अलावा एक और मूवी है जो कि मैं देखना चाहती हूँ इस हफ्ते, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखी है. That is the End of Oak Street. एंड हाथवे की मैं फैन हूँ. एंड गेस कीजिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप सुबह उठते हैं और आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और थोड़ा दूर जाके आपको पता चलता है कि आपका जो टाउन है वो लिटरली डायनासोर एरा में पहुंच गया है. मतलब आप डायनासोर एरा में पहुंच गए अपने पूरे के पूरे टाउन के साथ. क्या होगा, क्या है, कैसे, मतलब डायनासोर्स के साथ रहने की आदत नहीं है इंसानों को, कैसे रहोगे. वेल वेल वेल, यही सारी कहानी आपको नजर आने वाली है इसमें. और इसके अलावा एक और मूवी है जो आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो, एंड दैट इज पॉ पेट्रोल द डिनो मूवी, द डायनो मूवी. जी हाँ, ये डायनासोर मूवी है, बट इट्स ऑफकोर्स एनिमेटेड मूवी. सो ये पॉ पेट्रोल है एंड गो फॉर इट, इट्स अ फनी मूवी. इट्स अ फनी मूवी, कॉमेडी, एनिमेशन एंड एडवेंचर. मुझे लगता है बहुत लंबी बात हो गई है. सो यहाँ पे मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ, ये सारी की सारी मूवीज आप देख सकते हो. मुझे बताइएगा कौन सी आपकी चॉइस रही. इश्क मस्ताना आप सबके लिए.

पॉप जैज क्लासिक, कौन सी फीलिंग आपको नहीं आती इस गाने से? मतलब क्या क्रिएट किया है इम्तियाज अली एंड ए आर रहमान, क्या कहूं। एंड मोहित चौहान, मतलब यू आर तो ग्रेट ना, मतलब आपके लिए तो क्या ही मैं कहूं। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सुनने वाले हो और वो है मैसेकर। बिना देर किए मैं आपको सुनाने वाली हूँ अल्फा मूवी का ये गाना। अल्फा इज नॉट सो अल्फा, वाई एम आई सेइंग दैट, आई एम गोना टेल यू, बट पहले आप ये गाना सुनिए।

जी दोस्तों, और इसी के साथ मैं बहुत जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि कनाडा एंड अमेरिका के थिएटर्स में फिर से रिलीज किया जा रहा है हैरी पॉटर सीरीज को। व्हाई आर वी नॉट गेटिंग दैट री रिलीज? व्हाई? हैरी पॉटर तो मतलब ऐसी मूवी है जिसको हम कभी भी देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप का इंसान देख सकता है। तो यू नो व्हाट, मैंने उसको पूरा करने के लिए वो जो होल किया है इस खबर ने मेरे दिल में, मैंने उसे पूरा करने के लिए ठान ली है कि मैं हर वीकेंड हैरी पॉटर सीरीज की एटलीस्ट 2 फिल्म देखूंगी। और क्या आपको भी हैरी पॉटर मूवी इतनी पसंद है तो आप भी ट्राई कीजिए। मतलब हर वीकेंड आपको 2 मूवीज देखनी है हैरी पॉटर सीरीज की। टोटल 8 मूवीज हैं, सो गो फॉर इट जस्ट लाइक मी। एंड यू नो व्हाट, मैंने 3 मूवीज देख ली है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। एंड आई एम अगेन वेरी जेलस कि कनाडा और अमेरिका को ही क्यों मिल रहा है इसका री रिलीज। व्हाट अबाउट अस, वी आर ऑल्सो पॉटर हेड्स, मतलब वी ऑल्सो नीड हैरी पॉटर री रिलीज इन आर एरिया, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ कॉकटेल 2 आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और वो रिलीज हो चुकी है पिछले हफ्ते और आप उसे देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेलकम टू द जंगल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जियो हॉट स्टार के पास अपेरेंटली इसके राइट्स आए हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime पे आप उसे देख सकते हैं। यू हैव टू रेंट इट बट यू कैन वॉच इट। जी हाँ, इसके अलावा भारत भाग्य विधाता भी आप देख सकते हैं Z5 पे। अगेन देखिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी। तो ये कुछ मूवीज आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना जो कि दूसरे नंबर का है, मस्कारा, जो कि अगेन बहुत ही प्यारी मूवी है और इसका नाम है मैं वापस आऊंगा। ये कहाँ देख सकते हैं, आई एम गोना टेल यू अबाउट इट, पर पहले आप गाना सुनिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। नंबर वन गाने पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये खूबसूरत सा गाना मस्कारा आपने सुन लिया है, तो मस्कारा गिफ्ट करना अपनी फीमेल फ्रेंड्स को, अपनी मॉम को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उनकी आईलैशेस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज है और इसी पर ये गाना बना है। इसी के साथ ये मूवी मैं वापस आऊंगा भी आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। ये मूवी काफी इमोशनल करने वाली है, बट बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। सो गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ नंबर वन सॉन्ग है अगेन आवारापन 2 का, इमरान हाशमी इज रूलिंग द चार्ट विद हिज सॉन्ग्स। और बात तो ये है कि गाने पुराने ही हैं, मतलब पहली वाली जो आवारापन है उसी के दो गानों ने इस महफिल को लूट लिया है। नंबर वन गाना भी वही है और ये गाना है तो फिर आओ। जी हाँ, नहीं गाऊंगी, सो डोंट वरी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और अगेन हैप्पी वीकेंड, मजे कीजिए।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Fire ants, tuhaade ilaake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ke tuhaade kar jaan jayadad vich fire ants han, ta es di soochna deo. Asi tuhanu fire ants de ilaaj layi muft kit bhejange. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। Queensland Sarkar, Brisbane Valo Adhikarit, authorized by the Queensland Government.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: Yaar, saag mein kuch dam nahi hai. Bilkul maza nahi aaya.
5: Kisi din ghar aana, asli desi ghee mein saag banakar khilaunga tumhe.
4: Kahan yaar, aajkal asli desi ghee milte kahan hai?
5: Kis duniya mein ho bhai? Quality food service mein triple refined pure desi ghee milte hain. Australia mein hi bante hain 100% pure cream se. 99.9% pure milk fat se. Aur to aur har mausam mein uplabdh rehne ke saath saath high quality packaging mein bhi aate hain.
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
8: Hi, this is Amitabh Bachchan.
9: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: Hi guys, I'm Madhvi, one of the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani. Hi, this is Salman Khan.
11: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
12: Hi, this is दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
14: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
15: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
16: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
17: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
17: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
17: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234.
18: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
19: तूने ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
18: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
19: बिल्कुल. ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

0: ai, suco, suco!
1: Ai, ai, ai, करूं मैं क्या सुकू सुकू।